साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए सी हुक्म मन्ने होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मर जिंदा सो फल पाए सी।

0: सुत कूड़ अखी सुत वेखना पात्र प्रधान रूप कन्नी सुत कन पैलैत बारी खाहे नान कहंसा आदमी बदे जम प्रजाए महला पहला
1: सबो सुदक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोण रिजक संभाहे नानक जिन

को सच्चा सोए। जित मुख सदा सलाही है पागा रती चार, नानक ते मुख जले तित सच्चे दर।

चुप ही कर जाए। परवाह नहीं किसे करी बस सच्चे ना, दरबार टुपर खर्च मंगा जबे देता खाहे, दीवाने को कलम का हम आत्मा में डर लिखा।

समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गणना सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने सुव्यवस्थित मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।

0: 93 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से न्यायिक व्यवस्था में चुनौतियों, सुधारों और अधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान श्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं से न्याय प्रणाली को सुलभ और सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के समापन समारोह में भाग लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं, तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

साथ ना सवेरे 9:02 ते। अज दे प्रोग्राम च तुसीं कलाकार विदुषी किशोरी अमोंकर दा राग अलैया बिलावल विच गायन सुनोगे। NCERT वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सवेरे 9:30 प्रसारित किया जाएगा। सवेरे 10:02 ते सुनो लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम हैलो फरमाइश। इस प्रोग्राम च तुसी फोन करके अपनी पसंद दे फिल्मी गीत सुनते हो। साडा फोन नंबर होएगा 0181-23-42-173। 11:05 ते प्रसारित किया जाएगा फरमाइशी गीतां दा प्रोग्राम धमक जलंधर पैंती। इस प्रोग्राम च तुसी वट्सएप मैसेज करके अपनी पसंद दे गीत सुनते हो। वट्सएप मैसेज करन लई साडा नंबर होएगा 94-655-36-077। ये वट्सएप मैसेज तुहानू सवेरे 10 तो 10:30 के दरमियान करने होंगे। परिवारिक प्रोग्राम वास्ते वेड़े दोपहर 12:05 ते। अज के प्रोग्राम च सिलसिला होएगा मेहमान बरूहां ते, जिस तहत तुसी हरपिंदर सिंह ते हरलीन कौर नाल कीती मुलाकात सुनोगे। पकवान सिलसिला होएगा, गीत संगीत भी प्रसारित किया जाएगा। फौजी वीरां लई प्रोग्राम च तुसी फिल्मी गीत सुनोगे दोपहर 1:15। लोक गीतां दा प्रोग्राम रंगली धरती दोपहर 2:30। अज दे प्रोग्राम च कलाकार होणगे सुखविंदर सिंह सुतंतर कविशर ते साथी। दोपहर 3:00 साडे DTH चैनल तो तुसी सुनोगे फरमाइशी गीतां दा प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। शाम 4:02 ते सदाबहार गीत प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा। इस प्रोग्राम च तुसी पुराने फिल्मी गीत सुनते हो। शाम 4:30 श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 तुसी सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। दिहाती प्रोग्राम शाम 6:30 प्रसारित किया जाएगा, जिस विच कम दीयां गल्लां मंडियां दे भाअ दे नाल नाल डॉक्टर अनिरुद्ध ठाकुर आड़ू ते आलू बुखारे की तोड़ाई ते मंडीकरण इस बारे जानकारी देंगे। अवतार सिंह बिलिंग के नावल ते आधारित लड़ीवार होया देश पर आया इदा 5वां भाग सुनोगे। रात 7:40 ते विविधा प्रोग्राम च मेरी नई कहानी उनवान तहत हरदीप सबरवाल अपनी कहानी पेश करनगे। रात 8:00 सुनो फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 साढ़े दिल्ली केंद्र तो स्पॉटलाइट का प्रसारण किया जाएगा। रात 9:30 तुहानूं नाटक सुनावांगे। रात 10:02 ते कवि गोष्ठी का प्रसारण होएगा। रात 10:30 तुसी मुख्तलिफ फनकारां दी आवाज़ च गज़लां समात फरमाओगे। देर रात 11:10 ते तुसी सुनोगे लाइव फोन इन फरमाइशी गीतां दा प्रोग्राम सौगात साडे DTH चैनल तो। यह प्रोग्राम देर रात 11:10 तो लैके देर रात 1 तक प्रसारित किया जाएगा। परिचय तहत यह सी साडे अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामों का वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

0: अधिकैकासनेभ्यः केरलं राज्ये चत्वारिंशदधिकैकासनेभ्यः तमिलनाडुराज्ये चतुस्त्रिंशदधिकद्विशत आसनेभ्यः तथा पुडुचेरी इत्यत्र त्रिंशत् विधानसभासनेभ्यः मतगणना भविष्यति। पश्चिमबङ्गाले त्रिनवत्यधिकद्विशत आसनेभ्यः अद्य मतगणना भविष्यति। फाल्टा विधानसभायै पुनर्मतदानं मैमासस्य एकविंशतिदिनाङ्के भविष्यति, तत्रैव मतगणना च मैमासस्य चतुर्विंशतिदिनाङ्के भविष्यति।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीयान्तरिक्ष नवाचारेण गैलेक्स आई इत्यनेन संयुक्त राज्यामेरिकायाः कैलिफोर्निया इत्येतस्मात् स्थलात् स्पेस एक्स इत्येतस्य फाल्कन 9 रॉकेट इत्यनेन विश्वस्य प्रथमः ऑप्टोसार इति उपग्रहः मिशन दृष्टेः प्रक्षेपणम् कृतम्। 90 किलोग्राम मिता मिशन दृष्टिः नैज भारतीय संस्था द्वारा निर्मितः बृहत्तमः पृथ्वी निरीक्षणोपग्रहः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च मिशन दृष्टि उपग्रहस्य सफल प्रक्षेपणस्य प्रशंसां कृत्वा एतम् उपग्रहं भारतस्य अन्तरिक्षस्य नवानवेषणस्य च यात्रायां प्रमुखसोपानरूपेण वर्णितवन्तौ। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् 45-19 शततमात् वर्षात् कैलाशमानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घमार्गः अस्ति, एषः नूतनविकासः नास्ति इति। विदेशमन्त्रालयस्य आधिकारिकप्रवक्ता रणधीर जायसवालः कैलाशमानसरोवर यात्रायाः सन्दर्भे सीमाप्रकरणे नेपालस्य विदेशमन्त्रालयद्वारा कृतानां टिप्पणीनां विषये प्रसारमाध्यमानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् 45-19 शततमात् वर्षात् कैलाशमानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घमार्गः अस्ति, अनेन मार्गेण यात्रा दशकेभ्यः प्रचलति, अतः एषः नूतनः विकासः नास्ति इति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजे रक्षात्रिवेणीसङ्गमः, यत्र प्रौद्योगिक्याः उद्योगस्य सैनिकक्षमतायाः सङ्गमः भवति इत्येतस्य विषयम् आलक्ष्य उत्तरप्रौद्योगिकीसङ्गोष्ठ्याः उद्घाटनं करिष्यति। रक्षामन्त्रालयः संसूचितवान् यत् एतत् सङ्गोष्ठीपरिचालनं सम्बद्ध आह्वानानां निवारणाय अत्याधुनिक स्वदेशीय प्रौद्योगिकीनां प्रदर्शनस्य एकीकरणस्य च सजीवमञ्चरूपेण कार्यं करिष्यति। केन्द्रीय विधिमन्त्री अर्जुनराम मेघवालः ह्यः राँचीनगरे उच्चन्यायालयस्य अधिवक्तृणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे गुजरात टाइटन्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 4-2 पराजितम् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। सवेर दे 7 बज चुके ने, हुण तक दीआं मुख खबरां सुणो। पछमी बंगाल, असाम, तमिलनाडु, केरल ते पुडुचेरी विधानसभा चोणां लई पईआं वोटां दी गिणती अज सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ होण जा रही है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्स आई स्पेस ने स्पेस एक्स फॉल्कन 9 ते अपने उद्देश पूर्ण उपग्रह मिशन दृष्टि नूं सफलता नाल लॉन्च कीता है। पंजाब बीजेपी दे प्रधान सुनील जाखड़ की अगवाई हेठ वफद वल्लों राजपाल गुलाब चंद कटारिया नाल मुलाकात, पंजाब विच संविधानक दुरव्यहार बारे एक मंग पत्र सौंपिया। श्री अकाल तख्त साहब विखे वख वख पंथक जथेबंदियां ते विद्वानां दी एक अहम एकत्रता हुई। पंजाब सरकार वल्लों लियांदे गए जागत जोत एक्ट सोध बिल 2026 ते पंथक मसलियां ते कीती गई विचार चर्चा।

जागरूकता पैदा करने लिए पूरे भारत में अग सुरक्षा हफ्ता मनाएगा। मौसम विभाग वालों 5 मई तक सूबे में मीह ते गड़ेमारी बारे ऑरेंज अलर्ट जारी। पछमी एशिया टकराव के दरमियान पेट्रोलियम बरामद करने वाले देशों का संगठन ओपेक प्लस जून लई अपने तेल उत्पादन के टीचे वधाउण लई सिद्धांतक तौर पर सहमत हो गया है। ते ईरान ने जंगबंदी लई अमरीका नूं 14 नुकाती तजवीज पेश की है। ये सन हुण तक दीआं मुख खबरां। अगलियां मुख खबरां सवेरे 9 बजे प्रसारित कीतीआं जाणगीआं। ते आकाशवाणी जलंधर ते हुण प्रोग्राम सोहणी सवेर।

खा चुके हो, कुछ मसालेदार खा चुके हो, सेहत ढिली महसूस कर रहे हो, पेट च जलन महसूस कर रहे हो, तो तुहानू परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। ये परेशानी झट दूर हो सकती है, बस ना पानी च जीरा ते जवैन मिला के पियो, जलन जल के सवाह हो जाएगी। फिलहाल जी सोनी स्वेट प्रोग्राम तुहाडे मन चो बोरियत नू सवाह करन दी पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। आकाशवाणी जलंधर ते साडा ये प्रोग्राम चल रहा है। अज दा ये प्रोग्राम तुसीं अपने दोस्त वीरेंद्र दे नाल सुन रहे हो। वेखो जी, सियाने कहिंदे ने कि राह पद्धरा होवे ते तुरना मुश्किल नहीं हुंदा, तुसीं हसदे हसदे तुरदे रहिंदे हो, पर जे रस्ते च औकड़ां होण, समस्यावां होण, रुकावटां नाल भरिया तुहाडा रस्ता होवे, ते फिर कोई विरला ही है जिहड़ा जोश नाल तुरन दा जज्बा रखदा। समस्यावां सामने खड़ियां होण ना ते कोई वापस मुड़ जांदा, कोई डर जांदा, पर जिहड़ा समस्या नूं सुलझाउण दी अख च अख पा के वेख के उहनूं समझण दी कोशिश करदा ना, उह फिर नवें रस्ते लभदा। हुण वेखो जी, गर्मियां दे इस मौसम च जिहड़े साडे किसान ने उहनां दे सामने सब तों वड्डी समस्या इह है कि सब्जियां फल जिहड़े इन्ने मेहनत नाल तैयार कीते जांदे ने, वो मौसम करके गर्मियां करके खराब हो जाते हैं। साडे देश दे एक इंजीनियर ने जी विशाल सिंगल, जिन्होंने इस समस्या नूं समझिया ते इहनूं समझ के इहदे लई एक सस्ता जिहा उपा पेश करन दी कोशिश की। लगातार उन्होंने 15 साल इस समस्या ते खोज की, ते किन्ने ही तजर्बे करन तो बाद उन्होंने एक खास किस्म दे मटेरियल दा ऐसा क्रेट तैयार किया जिन्हों कोल्ड ईजी बॉक्स दा नाम दिता गया। यह जिहड़ा कोल्ड ईजी बॉक्स है ना जी, इहनूं ना तो बिजली की जरूरत है, ना किसी होर साधन की, बस ये थोड़ा जिहा पानी पाया जाता है, तो यह मटीरियल इदा का है कि थोड़ा जिहा पानी पाने नाल सब्जियां फल इस बॉक्स विच किन्ने घंटे ताज़ा रहिंदे ने, ठंडे रहिंदे ने, उन्हां नूं एक थां तो दूजे थां ते ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, तो वह खराब बिल्कुल नहीं होणगे। और एक खास मटीरियल का बनया जिहड़ा कोल्ड ईजी बॉक्स है ना, इहदी कीमत सिर्फ 3,500 रुपए है। सो वेख लो जी, साडे देश की जिहड़ी समस्या है जिहदे 40% सब्जियां ते फल तैयार होए मौसम करके खराब हुंदे ने, इस छोटे जे गैजेट नाल उन्हां दी बचत हो सकती है। इसे करके सियाने कहिंदे ने ना जी कि बंदे दे दिमाग च बड़ी ताकत हुंदी है, ते कोई भी मुश्किल बंदे दी समर्था तो वड्डी नहीं हो सकती जे साडे च मादा होवे उस समस्या नूं हल करन दा। सोनी स्वेट प्रोग्राम आकाशवाणी जलंधर तों प्रसारित किया जा रहा है।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ब्रेक तो बाद सोनी सवेर प्रोग्राम फिर तो हाजिर है जी। आकाशवाणी जलंधर से साडा यह प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा है साडियां वक्-वक् फ्रीक्वेंसीज़ ते 7:39 हो गए ने। सियाणे कहिंदे ने कि असी जो भी कर लईए ना होर बेहतर करन दी होर वधिया करन दी गुंजाइश हमेशा बाकी रहिंदी है, क्योंकि संपूर्ण तो कोई भी नहीं हो सकता। सो आपां कुछ भी करते रहिए होर बेहतर करन दी कोशिश वल सानू तुरदे रहना चाहिए। तो साडे समाज विच औरतां नू जिथे बराबरी दे हक देण दी गल है ना, इस खेत्र विच बहुत कुछ होया पर अजे बहुत कुछ करना बाकी है। ये ठीक है कि अज साडियां बच्चियां हर खेत्र विच अगे जा रहियां ने, सिक्ख्या लै रहियां ने, पर अजे भी इस खेत्र च बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि पंजाब दे आंकड़ियां दी जे गल करिए ना, तो पंजाब विच जिहड़ी औरतां दी साखरता दर है वह 70.7% है ते मर्दां दी 80.4% है। कामकारां विच अजे भी पंजाब विच जिहड़ी औरतां दी हिस्सेदारी है वो सिर्फ 15.7% है। सो ये आंकड़े सानू दसते हैं कि अजे भी बहुत सारे घर बहुत सारे इलाके इदां दे ने जिथे बच्चियां नू पढ़ाउण वल बेहतर मौके देण वल बहुता ध्यान नहीं दिता जाता, मुंडियां नू ज़्यादा तरजीह दी जाती है। जबकि आपां जदों नतीजे वेखदे हां ते देखदे हां कि लड़कियां दे नतीजे हमेशा लड़कियां नालों बेहतर हुंदे ने। सो जी धीआं नू असीं बराबर मौके देईए तां कि वो कामयाबी दे अंबर चुम सकण। हुणे हुणे देखो पंजाब दी इक धी जसप्रीत कौर एशियन बीच गेम्स विच कुश्ती मुकाबलियां च भारत दे लई ब्रोंज मैडल लेके आई है। सो उहदी ये प्राप्ति भी साढ़े सारयां दे लई इक सुनेहा है, एक मैसेज है कि असीं धीआं नूं बराबरी दे हक देईए। आओ फिर जसप्रीत कौर नाल गल करके उहदा ये मैडल दा तजर्बा सांझा करदे हां कि ये प्राप्ति उहने किद्दां हासिल कीती। सो जसप्रीत सोहणी सवेर प्रोग्राम च साढ़े सारे सुनण वालियां नूं दसो कि तमगे दी ये प्राप्ति किद्दां होई, किहड़े किहड़े पहलवानां दे नाल तुहाडे मुकाबले होए सन।
2: सर मैं 70 किलो भार वर्ग विच भाग लिया सी
1: जी।
2: ते मेरिया 7 to 8 कुश्तियां होईयां होणगीयां। पहलियां 2 कुश्तियां तां नेपाल नाल सी, फिर वियतनाम नाल सी।
1: अच्छा।
2: ते जापान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, वियतनाम हो गया।
1: सब तो मुश्किल कुश्ती केड़ी लगी तुहानू जसप्रीत?
2: जेड़ी मैं कुश्ती लूज करी है सर वियतनाम नाल सी मेरी कुश्ती, ते ओ मैं लूज करी आ, ओ मतलब ओ कुश्ती दा मैनू

0: वो तो हुआ, थोड़ा मेरे च भी कमी सी भी, मतलब मैं अपनी पावर स्ट्रेंथ मेनू ओ मतलब कुड़ी नाल अपने च घट लगी।
1: इस कुश्ती ने तुहानू ए सबक दिता होएगा कि कुछ खेतरां च होर तगड़े होण दी जरूरत है।
0: हाँ जी सर, हुण मैं अपना जाके इस चीज से अपनी काम करूंगी, अपनी प्रैक्टिस होर वधिया, अपनी डाइट मतलब जेड़ा मेनू कमी लगी ओनू मैं दूर करन दी कोशिश करूंगी।
1: अच्छा जसप्रीत, दसो कि तुहाडा कुश्ती लड़न दा स्टाइल किदां दा है? तुसीं अटैकिंग कुश्ती लड़ना पसंद करदे हो कि डिफेंसिव रहना पसंद करदे हो?
0: जिवें सर कुश्ती विच एवें हुंदा वी पहला पॉइंट ले मैं ले लवां, फिर एवें हुंदा वी मैं नहीं अटैक मारना, मैं डिफेंस करा, अगला सामने वाला बंदा अटैक करूगा क्योंकि उन्हें एवें होगा ना वी मैं हार रहा, मैं अपने पॉइंट कवर करने हैं। जे मैं हार रही हूँ मेरे पॉइंट घट होंगे फिर मैं सोचूंगी अटैक करने का भी, नहीं मैं हार रही हूँ मैं हूँ अटैक करके अपने पॉइंट कवर करने हैं।
1: अच्छा जसप्रीत, हर पहलवान का ना कोई ना कोई फेवरेट दा होंदा जिदे च लाउण च उन्नू महारत होंदी है और उसी ताक च रहिंदा है कि मेरा ये दा लगना चाहिए, तुहाडे नाल किदां है जी?
0: हाँ जी, हर एक दा अपनी अपनी टेक्निक होंदी है, जिवें मेरा लैग अटैक आ मतलब शुरू तो ही मेरा फेवरेट रहा, जो ज्यादातर मेरा कुश्तियां च लगदा वी है लैग अटैक।
1: अच्छा साडे सुनण वालियां नूं दसो कि कुश्ती दा सफर केड़े अखाड़े तों तुसीं शुरू कीता सी अज इत्थे तक पहुंचे?
0: सर मैनूं 13 साल हो गए लगभग कुश्ती करदे नूं, ते मैं जदों मैं 9वीं क्लास पढ़दी सी उदों ऊंचे पिंड संघोल फतेहगढ़ साहिब विच सेंटर बणिया होया सी, राजवीर कोच साहिब हुंदे सी, पर हुण उहनां दी 2016 च डैथ हो गई सी
1: जी।
0: हाँ, मेरी कुश्ती की शुरुआत उन्हां कोल ही हुई सी।
1: सो साडियां शुभकामनावां तुहाडे नाल ने, असीं आस करांगे कि अपनियां कमजोरियां ते फतेह पा के तुसीं फिर तों दोबारा भारत लई सोने दा तमगा अगली बार लेके आओगे।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: बहुत मेहरबानी गलबात लई।
0: ठीक है, थैंक यू सर।
1: सो पंजाब दी धी जसप्रीत कौर नाल छोटी जी गलबात सी जो सानू ये दसदी है कि किस तरीके दे नाल चाइना च जिहड़ियां एशियन बीच गेम्स होईयां उहदे च जसप्रीत ने बहुत सारियां कुश्तियां लड़ के जित के देश लई ब्रॉन्ज मैडल जितया। सो जी धीआं नूं जदों असीं मौका देंगे ना तो वह इदां दे तमगे इदां दीआं कामयाबियां हासिल करनगियां ही। हुणे हुणे एशियन बीच गेम्स च तुहानूं पता होएगा कि जिहड़ी औरतां दी कबड्डी दी टीम है उहने गोल्ड मैडल जितया, तो उहदे च साडी मुक्तसर दी धी सिमरन कंबोज भी सी। तो जदों उहनूं पुछया ना कि तुहाडी इस कामयाबी का राज की है, इस मुकाम ते तुसीं किद्दां पहुंचे हो, तो उहने अपने माता पिता बारे ये कहा सी।
2: पेरेंट्स का तो सहयोग बहुत ज्यादा है, मेरे नानका फैमिली मेरे दादका फैमिली दोनों का एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती सर, कि आज मैं इतने हाँ तो मैं उन्होंने भी बदलती हाँ।
1: सो जी जदों घर विच बच्चियां नूं माहौल दिता जाएगा ना अगे वधन दा, मौके हासिल करन दा, ते साडियां धीआं साडे लई प्राप्तियां करनगियां। सो ए सोच हर घर हर मन विच होनी जरूरी है कि असीं लड़कियां नूं बराबर पढ़ाई दे ते अगे वधन दे मौके देने ने। सोनी स्वर प्रोग्राम आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किया जा रहा है।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम

0: काल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले

0: इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
2: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो 3, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र हैं, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
1: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
2: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता हैं वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है उनके नेता 2 सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो 2 जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदय निधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है जो कि मैलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही है मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
1: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का 1-1 निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
4: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर 1-1 केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6,000 मतगणना कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए

0: मत का आंकड़ा 64 है। जी
1: जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
2: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमन।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के

0: समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद मुकेश। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, पांच प्रदेशों में दलों की धड़कनें तेज। हिंदुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नवभारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट ना सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं, ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को 2 टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च। चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति। पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, पश्चिम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिन फॉर असेंबली इलेक्शंस इन असम, वेस्ट बंगाल, केरलम, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑल्सो अंडर वे फॉर बाईपोल्स इन 7 असेंबली कंस्टिट्युएंसीज। India rejects Nepal's objection to Kailash Mansarovar Yatra through Lipulekh Pass, calls it unjustified. IMD forecasts thunderstorms accompanied with hailstorm over North India, including Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. United States to launch Project Freedom to guide stranded ships safely out of Strait of Hormuz. And in IPL cricket, Gujarat Titans defeat Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night. And now the news in detail. Counting of votes began for the assembly elections in Assam, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry this morning. Counting began at 8 a.m. with postal ballots taken up first, which will be followed by electronic voting machines or EVMs. Early trends are expected to emerge by noon. The Election Commission has made elaborate arrangements to ensure peaceful and transparent counting. Counting of votes is being conducted for 293 seats in West Bengal, 100

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
2: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
1: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
2: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
1: यानी कि झांजरां दे बोर हुन शनिवार छण क्या करनगे?
2: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
1: यानी कि बुधवार दी झांजरां दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छण क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
2: जी।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूं अजीत, नमस्कार। जी हां श्रोताओ, आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम।
2: जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी शिक्षाप्रद और मनोरंजक जानकारियाँ।
1: तो आइए सुनते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: समय पर न समझ आने वाली बातें आगे चलकर जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक बन जाती हैं, क्योंकि इनसे हम या तो सीखते हैं या फिर जीवन भर पछताते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, सच है बिल्कुल। किसी बात को समय रहते यदि हम समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत देर हो जाती है और तब अक्सर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
2: जी
1: तो आइए समय को हल्के में ना लें, इससे सबक लें। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और परिवारजन लिखते हैं,
1: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल वाले सप्ताह में आपने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और इससे जुड़े सर्वाधिक मशहूर चिकित्सकों और उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथों पर व्यापक जानकारी दी और उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प वाक्यात को नाट्य प्रस्तुतिकरण के मार्फत हमें सुनाया। सुनकर हम धन्य हो गए। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम उमंग कार्यक्रम के श्रोता हैं।
2: छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा, कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, पद्म लोचन मोहंती, शुभम नायक, अभिराम साहू, अविनाश दास और गीतांजलि दास।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आपने अंतरिक्ष से

0: पंथित आज बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उमंग कार्यक्रम सुनकर हम देश विदेश की जानकारियां प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत बढ़िया जानकारी हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम को।
1: आप सभी श्रोताओं को भी हमारा धन्यवाद अच्छी और प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए। और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों की। जिन्होंने भाग लिया उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं लिया उन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अवश्य भाग लें। तो हमारा पहला प्रश्न था,
0: भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद सबसे पहले किसे दिया गया?
1: जी, इसका उत्तर है, पहले भारतीय सेना में सबसे ऊंचा मानद पद था फील्ड मार्शल। ये सबसे पहले जनरल सैम मानेकशॉ को दिया गया था। उनका पूरा नाम था सैम होर्मुजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इन दिनों भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रधान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। ये पद सबसे पहले जनरल बिपिन रावत को दिया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, भारत के प्रसिद्ध गुरुकुलों में वशिष्ठ गुरुकुल, द्रोणाचार्य गुरुकुल, वाल्मीकि गुरुकुल और कर्ण गुरुकुल माने जाते हैं, इनमें से किन्हीं दो की विशेषता बताइए।
1: जी, हम आज वशिष्ठ और द्रोणाचार्य गुरुकुल की विशेषता आपको बता देते हैं। वशिष्ठ गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता थी समान भाव। यहाँ राजा और सामान्य परिवार के बच्चे भी एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ मायनों में यहाँ समावेशी शिक्षा थी। द्रोणाचार्य गुरुकुल की मुख्य विशेषता थी युद्ध कला की विशेष शिक्षा। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न था, श्रोताओं, जनसंख्या के आधार पर भारत की प्रमुख चार जनजातियों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है, जनसंख्या के आधार पर भारत की चार प्रमुख जनजातियाँ हैं, गोंड, भील, संथाल और उरांव। इन्हें उरांव भी कहते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का विस्तृत वर्णन किया है?
1: इसका उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन चीनी यात्री हुइन संग ने अपने संस्मरणों में किया। इनका संस्मरण चीनी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद है, द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के तीन प्रसिद्ध गुरुओं और एक प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए।
1: प्रसिद्ध गुरुओं या आचार्यों के नाम है कौटिल्य यानी चाणक्य, पाणिनी और वैद्यराज चरक, और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।
0: तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए।
0: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है
1: सींग विदाउट सींग।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का खास ख्याल रखें।
2: लिटिल लॉन्ग शांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Unshangla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
3: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
4: Yes, let us play.
2: She tied a scarf over Ongshangla's eyes.
3: Now, tell me, what do I hold in my hand?
4: How can I? My eyes are closed. I can't see.
3: You can find out. Try it. What do I hold?
2: Ongshangla touched it.
4: It is something soft.

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम बंदर और बया।
0: ये एक रोचक लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें बंदर और एक सुंदर बया पक्षी की मित्रता के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम का संदेश है मित्रता और आपसी सहयोग की भावना।

दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़ा शैतान था। ना काम ना धाम, सारे दिन कूदता फिरता इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर।

0: उसी जंगल में एक बया भी रहती थी। जानते हो दोस्तों, बया बड़ी समझदार होती है। समझदार ही नहीं, बहुत मेहनती भी होती है। उसने सोचा कि बरसात आने वाली है, चौमासे में पानी खूब बरसता है, इसलिए उसने बरसात से बचने के लिए उपाय सोचा। जानते हो दोस्तों क्या? बताएगा तुम में से कोई? बताओ बताओ। पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ पर क्या बनाते हैं? हाँ सोचो सोचो।
1: घोंसला।
0: हाँ, बारिश से बचने के लिए पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो दोस्तों, बया ने भी यही किया। दिन रात मेहनत की, तिनका तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका लिया। एक बात तो हम भूल ही गए, बया का घोंसला बड़ा अजीब होता है। बया अपने घोंसले में एक खाना तो बनाती है बड़ा, और बाकी खाने वो बनाती है छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बंदर भाई भीगते हुए उसी पे

0: पेड़ पर आ बैठे जहां बया का घोंसला था। पानी बहुत जोर से बरस रहा था। बया को बंदर पर दया आई और बोली,
1: क्यों बंदर जी, तुम इतने परेशान क्यों हो?
2: अरे बया, देखती नहीं चारों ओर पानी ही पानी है। मैं भीग रहा हूँ, उस पर ये ठंडी हवा चल रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है।
1: बंदर जी, ये कैसी बात, ऊपर पड़ती है बरसात, सर्दी तुम्हें सताती है फिर भी समझ न आती है, वर्षा से बिल्कुल बच जाते, साधन कोई अगर जुटाते, दिन भर उछला करते हो, मेहनत से तुम डरते हो।
2: ज्यादा बात बनाओ मत, सेठी मुझे दिखाओ मत, छोटा मुंह और बात बड़ी, जीभ चलाती खड़ी खड़ी, गुस्सा मुझे दिलाएगी तो पीछे तू पछताएगी। तू चिड़िया, मैं बंदर हूँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।
1: मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी बंदर जी, इतने भीग रहे हो, कुछ नहीं तो वो सामने माली के छप्पर पर दलिया पड़ी है, उसे उठाकर सिर पर रख लो, कुछ तो बचोगे ही।
2: अरे तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने?
1: मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी हूँ, ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था। कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पात लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना, ताकि पानी बरसे तो चैन से उसके नीचे बैठ सको।
2: अरे कल की कल देखी जाएगी, अब तू सीख बंद कर। मैं डलिया लाकर पहले आज का काम चलाता हूँ।
0: दोस्तों, वो रात बंदर ने सिर पर डलिया रखकर काट दी। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी, बंदर फिर उछल कूद में मस्त हो गया। दो चार दिन बाद फिर पानी बरसा, पेड़ पर बैठा बंदर भीगने लगा। हाँ, बया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। बंदर को भीगता देखकर वो पूछ बैठी,
1: तुम्हारी उस दिन वाली डलिया कहाँ गई? उसे सिर पर ढक लो।
2: डलिया क्या रखी रहेगी, उछल कूद में वो तो अगले दिन ही टूट गई।
1: अरे ऐसी उछल कूद क्यों की? कि डलिया ही तोड़ डाली।
2: चुप रह, टूट गई तो टूट गई।
1: जिससे नुकसान होता हो ऐसी आदत बुरी होती है। हाँ, और बुराई तो छोड़ने की ही चीज होती है। दिन भर हाथ चलाते हो, समझदार कहलाते हो, कोई आदत अगर बुरी है क्यों न छोड़ तुम पाते हो?
2: डलिया टूटी है माली की, आदत मेरी साथी है, अकलमंद बन कर क्यों मुझसे ज्यादा जीभ चलाती है?
1: मैं तो इसलिए कह रही थी बंदर जी कि तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है।

0: मैंने तो ये भी कहा था कि दिन में कहीं से घास पात बटोर कर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेते, तो ये कष्ट क्यों सहन करना पड़ता?
1: मेरे आगे जीप चलाती हैं, क्यों ज्यादा इतराती है? छोटा मुंह और बड़ी बात कर मुझको सीख सिखाती है। नहीं जानती मेरी ताकत, मुझसे आंख मिलाती है। मैं पानी में भीग रहा हूँ, तू बैठी इतराती है।
0: हे राम, यही तो मैं भी कहती हूँ बंदर जी, कि भगवान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकत दी है, मुझसे ज्यादा बड़ा शरीर दिया है। मुझे कोई चीज लानी होती है तो चोंच में लाती हूँ। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, फिर भी अपने बचाव का इंतजाम नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये है कि
1: क्या मतलब?
2: अरे बच्चों, ये क्या? बया चिड़िया तो रोने लगी। क्या तुम सोच सकते हो कि बया चिड़िया क्यों रोई? सोचो सोचो, आखिर बंदर ने गुस्से में आकर क्या किया? सोचो।
3: शाबाश,
2: कुछ बच्चे तो बता रहे हैं। अरे भाई जरा जोर से बताओ।
3: हाँ,
2: बंदर ने गुस्से में आकर बया का घोंसला ही तोड़ दिया, तभी तो बया रोने लगी। दोस्तों, बंदर ने अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया तो गुस्से से बया का घोंसला ही तोड़ दिया। दोस्तों, बंदर ही नहीं और भी बहुत से जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। क्या तुम ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हो? सोचो सोचो। हाँ शाबाश, बताओ। हम तुम्हें ये बता देते हैं कि ये जानवर अपने लिए घर बनाते तो नहीं, पर दूसरे जानवरों के बनाए घरों में रहने लगते हैं। हाँ भाई, जरा सोच कर बताओ। हाँ बताओ बताओ। अच्छा दोस्तों, हम कुछ अता पता बता देते हैं। बता दे। अच्छा ये बताओ, चूहा कहाँ रहता है? बताओ बताओ। हाँ, बिल में। अच्छा, और कौन सा जानवर है जो अपना बिल नहीं बनाता और दूसरे जानवरों के बिल में रहता है? सोचो सोचो। याद आ गया? हाँ, सांप। दोस्तों, वो अपना घर खुद नहीं बनाता। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से जानवर हैं जो घर बनाकर रहते हैं, और कई जानवर अपना घर नहीं बनाते, जैसे वो बंदर था, है ना? अच्छा दोस्तों, तुम भी सोचना और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। सोचोगे ना?

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: तुसी NCERT वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुन रहे सी।

10:15 हो चुके ने जी। आकाशवाणी जलंधर ते हुण पेश है लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम। हैलो फरमाइश, इस प्रोग्राम च तुसी फोन करके अपनी पसंद दे फिल्मी गीत सुनदे हो। साडा फोन नंबर है 0181 23 42 173 0181 23 42 173। तुहाडा दोस्त वीरेंद्र हाजिर है अज का यह प्रोग्राम तुहाडी सेवा च लैके। तो सारयां नूं एक बेनती कि जिहड़े चार दिन पहलां जां कल ही परसों ही साडे इस प्रोग्राम च आए सी ना, वो अज फोन ना करन ताकि बाकी दोस्तों की वारी आ सके।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: 10:56 हो चुके ने जी। हैलो फरमाइश प्रोग्राम च हुण बस आखिरी गीत है ते आखिरी फोन कॉल है। देखिए प्रोग्राम दे आखिर च कौन आए ने। हाँ जी स्वागत है जी।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं सोहन लाल बोलता पिंड सलामवाला जिला फाजिलका का।
0: और जी सोहन लाल जी ठीक ठाक हो?
1: वधिया, तुसीं अपना दसो।
0: बहुत ही वधिया ने। ते दसो गीत केड़ा सुनना है प्रोग्राम दे आखिर च?
1: हाँ सीमा दा मन्ना दे दी वाच है, बूंद के प्यासे हम,
0: तू प्यार का सागर है।
1: हाँ प्यार का सागर है।
0: ठीक है जी सोहन लाल जी, तुहाडी फरमाइश दा गीत आउण लगा है जी। मन्ना डे होरां दी आवाज़ च प्रोग्राम दा आखिरी गीत सुणदे हां सीमा फिल्म चों। तुसीं सारे लो जी इस गीत दा मज़ा ते अपने दोस्त वीरेंद्र नूं दे दिओ इजाज़त अज दा इह प्रोग्राम हैलो फरमाइश खत्म करन दी। नमस्कार।

0: ਸਾਨੂੰ ਪੜੀ।
1: ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਇਨ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक के रुझान इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से काफी आगे निकल गई है। अब तक के रुझानों में विधानसभा की 293 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर आगे है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 69 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 6 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लहा के पास। कल्याण, मतगणना के 3 घंटे बीत चुके हैं, पश्चिम बंगाल में ताजा स्थिति क्या है?
3: देखिए कनकलता, अभी बहुत सारे सीटों में, जैसे कि आप देख रहे हैं, 100 से ज्यादा सीटों में अभी बीजेपी लीड में है और टीएमसी बहुत पीछे पड़ा हुआ है। और भवानीपुर जो इम्पोर्टेंट सीट है, जिसमें चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कॉन्टेस्ट कर रही है, उसमें शुभेंदु अधिकारी लीडिंग में है। और शुभेंदु अधिकारी दूसरे सीट में जो लड़ रहे हैं अभी नंदीग्राम में, दोनों ही सीटों में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का भी लीड में चल रहा है। और पूर्व वर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है, जो टीएमसी का घर है, उसमें भी बहुत सारे सीटों में बीजेपी आगे चल रहा है। और बांकुरा पुरुलिया में भी कांटे का टक्कर चल रहा है। और तीनहाटा जो एक इम्पोर्टेंट सीट है, उसमें बीजेपी कैंडिडेट अभी आगे चल रहा है।
2: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। असम में विधानसभा की 126 सीटों के रुझानों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। भाजपा 76 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार केवल 24 सीटों पर आगे चल रहे हैं। असम गण परिषद 9 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे हैं, जबकि कांग्रेस के गौरव गोगोई जोरहाट सीट पर पीछे चल रहे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन 94 सीटों पर आगे है, जबकि सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन एलजीएफ केवल 44 सीटों पर आगे चल रहा है। एक सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन धर्मादम सीट पर पीछे चल रहे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों में से 218 सीटों के रुझान मिले हैं। अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के 100 सीटों पर बढ़त के साथ अन्य दलों से आगे चल रही है। एआईएडीएमके 64 सीटों पर आगे है, जबकि सत्तारूढ़ डीएमके 37 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन अपनी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 18 सीटों के रुझान मिले हैं। एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर आगे है।

कांग्रेस ने 3 सीटों पर और डीएमके 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी चल रही है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्षदभाई गोविंद भाई परमार बढ़त बनाए हुए हैं। बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेथी आगे हैं। दावणगेरे दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दास करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं। राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले आगे हैं। बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित

0: हद बनाए हुए हैं। बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलापा मेथी आगे हैं। दावणगिरी दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दास करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं। राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले आगे हैं। बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। अजित पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। संगोष्ठी में देशभर से एमएसएमई, निजी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप और सैन्य कर्मियों सहित कई प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि यह क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिनीवेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 11:05 वज रहे ने ते आओ सुनते हैं प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। जी दोस्तों, इस प्रोग्राम विच तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद गीत सानू फरमाइशां करके व्हाट्सएप दे जरिए। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप दे जरिए सानू अपना नाम टाइप करके भेजो, अपने गीत दे बोल टाइप करके भेजो, जड़े तुसी गीत दी फरमाइश करना चाहुंदे हो, ते नाल दे नाल अपने शहर दा नाम जरूर टाइप करके भेजो। ते ए टाइप करन वास्ते नंबर नोट करो 9465536077 यानी कि 9465536077। सो दोस्तों, फटाफट इस नंबर नू तुसी डायल करो, टाइप करो, सारी डिटेल तो सानू भेज दो। प्रोग्रामा दा विच सिलसिला चलेगा तुहाडी फरमाइशां तुहाडे तक पहुँचाउण दा, ते ए सिलसिला मैं यानी कि वीनस पूरा करूँगी। सो दोस्तों, प्रोग्राम दा शुरुआती गीत सुनदिया ते शुरू हो चुका प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। फटाफट सारी डिटेल सानू भेजो, अपने मनपसंद गीत फरमाइशां करके सुनो व्हाट्सएप दे जरिए।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

गौतम जैन, ये मैंने समझ नहीं लगी, शायद न्यूजीलैंड तो गौतम जैन जी ने भी फरमाइश भेजी है। सो अगली फरमाइश आई है जी, जिला फाजिलका पिंड बाजीदपुर पोमा तो संतोख सिंह वड़िंग तेरने दे बहुत सारे साथियों ने अगली फरमाइश सानू भेजी है जी। सो दोस्तों इन्हों सब की फरमाइश तो आओ सुनते हैं गुलरेज अख्तर, दिलजीत दोसांझ ते गिप्पी गरेवाल की आवाज़ में एक गीत।

जी तमक जलंधर पैंती प्रोग्राम चकली फरमाइश आई है जी रोंटी मोहल्ला जुगराऊ तो भेजन वाले ने नगीना जैन दर्शन जैन मोनू जैन दीपा जैन सुनील बिरला सुच्चा पाठक प्रदीप पाठक ते उन्होंने बहुत सारे साथी फरमाइश कर रहे हैं जी इन्होंने अमरिंदर गिल का गाया हुआ गीत सुनाया जाए तो अमरिंदर गिल के गाए हुए गीत को ही सुनना चाहते हैं नागपुर महाराष्ट्र तो कमल साहनी एम पी पिंकी साहनी तो डॉक्टर अफजल मलिक अगली फरमाइश सानू आई है जी सैक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो भेजन वाले ने रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गरवी ते बेबी बॉय हिमांश अगली फरमाइश सानू आई है जी पिंड कुंडाली तो भेजन वाले ने श्री भूमि ते अगली फरमाइश सानू आई है जी झज्जर हरियाणा तो भेजन वाले ने पिट्टू भाटिया ते रीटा भाटिया अगली फरमाइश सानू आई है जी डबकी रोड ओखला तो भेजन वाले ने सुशीला देवी मंदूकर सदानंद मंदूकर कुमार गौरव मंदूकर आरव ते अर्पिता अगली फरमाइश सानू आई है जी पिंड जलालापुर सिरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश तो भेजन वाले ने शरवण कुमार प्रजापत शिवम प्रजापत आर्यन प्रजापत लाविस प्रजापत ते मुनेश प्रजापत अगली फरमाइश सानू आई जी सैक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा तो भेजन वाले ने विनय मोहन खान मीनाक्षी पोलमा ते डॉक्टर ईशानी अगली फरमाइश सानू आई है जी दतरिंगी तो भेजन वाले ने भागवत वर्मा शांति देवी लीला देवी विनीत वर्मा ते रुद्र वर्मा सो इन्हां दी फरमाइश पूरी करदे हां ते आओ सुनदे हां अमरिंदर गिल दी आवाज़ विच एक गीत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 184 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं। वामदल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, यहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 99 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। एलडीएफ 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके 109 सीटों पर आगे है। एआईएडीएमके गठबंधन 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। डीएमके गठबंधन 52 सीटों पर आगे है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, कहा जा रहा था कि टीवीके के विजय इन चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगे और वही होता दिख रहा है। जीत के प्रति आश्वस्त टीवीके ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब क्या लग रहा है कि विजय एमजी रामचंद्रन के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
1: देखिए कनक, विजय की ये जो विजय है राजनीतिक मैदान में वो जबरदस्त है। जिसे आप कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होती है, वैसे इस बार के राजनीतिक मैदान में, इस बार के चुनाव में उनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है और जबरदस्त सफलता मिल रही है। जो आपने तुलना की एमजीआर से, एमजीआर के बारे में कहा जाता है वो एक विचारधारा से एक राजनीतिक आंदोलन की उपज थे, लेकिन विजय को ये बात उनसे अलग करती है क्योंकि वो किसी राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है, लेकिन उनका एक करिश्मा है, युवाओं में उनकी एक अपील है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। तो इस तरीके से विजय का एक अपना करिश्मा और जो सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जो सरकार के खिलाफ लोगों की इच्छा थी, एक बदलाव की जो इच्छा थी, वो बदलाव हमें विजय के रूप में सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा जो जादुई आंकड़ा है 118 का, उससे कुछ पीछे रह सकते हैं, लेकिन अभी ये आने वाले कुछ वक्त समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल पाती हैं। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिल गए हैं। एआईएनआरसी 15 सीट पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 सीट पर आगे हैं।

0: चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
0: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम डीएमके पार्टी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण,

0: मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
1: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम डीएमके पार्टी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से इन सूचकांकों को मजबूती मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 808 अंक उछलकर 77,721 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी से जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वसदे विड़े।

0: नमस्कार।
1: वसदे विड़े प्रोग्राम सुन रहे तमाम दर्शकों का, स्रोतियों का मीनू वालों बहुत बहुत स्वागत।
0: तो मेरे पूनम वालों भी प्यार प्यार नमस्कार। मीनू जी, तुहानू भी नमस्कार। की हाल चाल ने?
1: मैं बहुत वधिया, और पूनम तुसी किदा हो? की हाल चाल ने?
0: हाल चाल दुरुस्त ने। तो असी जो अपने स्रोतियों नूं मिलदे हाँ, अपने भैणों नूं मिलदे हाँ, तो हाल चाल होर बहुत ही वधिया हो जाते हैं।
1: पूनम, सियाने कहंदे ने कि जेकर तुसी उही करदे रहोगे ना जो हमेशा तो करदे आए हो, तां तुहानूं उही मिलेगा जो हमेशा तो मिलदा आया है।
0: बिल्कुल,
1: बदला हमेशा जरूरी हुंदा है, ते हमेशा शुरुआत अपने आप तो करनी चाहिए इंसान नूं।
0: बिल्कुल सही कहा तुसी, पर ये उन्ना ही मुश्किल भी हुंदा है, क्योंकि असी बहुत ही एक कंफर्ट जोन दे विच जो जी रहे हुंदे हैं ना, तो बदलाव की आस तो उम्मीद तो कर रहे हुंदे हैं, पर उसके लिए जो कोशिश करनी पैंदी है ना, तो फिर बहुत मुश्किल लगता है। हुण तुसी इसे लिए एक उदाहरण ही सुन लो कि जेकर असी सोचिए कि असी अपना वजन घटाना है, तो असी चाहते तो हर रोज़ आ, पर उसके लिए जीवन शैली दे विच बदलाव करन लगे हाँ, सानू लगता है कि बहुत मुश्किल है। कल करांगे, परसों करांगे, पर बदलाव करांगे तां ही बदलाव आएगा।
1: जी, और देखो सब तो वड्डी जिहड़ी जंग हुंदी है ना, ओह बिस्तरे तो ही शुरू हुंदी है। जे ओह
0: बिल्कुल
1: आलस ओह जंग असीं जित लई ना, ते इन्नी मेहनत जिम दे विच या पार्क दे विच चलण वेले नहीं कीती जांदी जिन्नी मेहनत उठण वेले कीती जांदी है। सो जे असीं करदे हाँ तां बदलाव बहुत छेती भी नज़र आउंदे ने साडे अंदर, क्योंकि असीं जे जारी रखांगे बदलाव करना और अपनी आदतां नूं, जिवें कि सवेरे उठणा, जिम जाणा, एक्सरसाइज करनी और खाणा पीणा रूटीन दा करना, तो बहुत कुछ जीवन शैली दे विच सानूं अपने आप ही सुधार होना नज़र आना शुरू हो जाएगा।
0: बिल्कुल जी। तो सवाणिया की जेकर असी गल करें तो सवाणिया की जिहड़ी रूटीन हुंदी है ना, तो हर रोज़ इको ही तरह की हुंदी है। उस दे विच सवेरे उठना, खाना बनाउणा, फिर दोपहर के खाने तैयारी करनी, रात के खाने तैयार करनी, घर के काम काज करनी, तो कई बार उन्होंने इंज लगन लग जाता है कि कुछ बोरिंग जिंदगी हुंदी जा रही है। पर उस दे विच जेकर असी कुछ नवापन लैके आवेंगे, कुछ बदलाव लैके आवेंगे, कुछ अपनी पसंद करांगे, तो ही एक रौचकता जीवन दे विच उत्सुकता बनी रहती है।
1: बिल्कुल, खड़ोत नहीं आती जिंदगी दे विच। ते मैनूं लगदा है कि बदलाव जेकर मौसम दे विच भी हुंदा ना, तां भी खुशहाली लैके आंदा है। ते कल दा जिहड़ा मौसम बदलिया उसने थोड़ा जिहा तापमान नूं सही कीता है, इदां लगदा है कि गर्मी हले आई नहीं है।
0: तापमान जिहड़ा है ना, वह हुण इस तरह का है कि इस दे विच लगातार बदलाव हो रहा है। ये मौसम दे विच जो लगातार बदलाव हो रहे हैं ना, आने वाले जो जलवायु परिवर्तन वड्डे पद्धर ते हो रहे ने, उसकी निशानी है। तो लू पिछले दिनों दे विच काफ़ी लगी, ते हुण आने वाले दिनों दे विच भी लू का जिहड़ा मौसम है इस तरह बनिया रहेगा। पर

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली

0: ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: देखो जी, ये जो सारे सुनेहे असीं दिंदे हां, इसका मकसद यही है कि असी वाकई सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तो जो साड़ी रूटीन का सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना, कि असी जदों टेक्नोलॉजी दे नाल जुड़दे हां तां उस वेले असी अवेयर रहिए।
5: बिल्कुल सही गल है पूनम, कई बार असी इन चीज़ों को अनदेखा कर दें, पर जो असी रेडियो सुनते हैं स्पैशली वाजदे वेड़े प्रोग्राम दे नाल जुड़ते हैं तो बहुत सारिया चीज़ा सानू जागरूक कर दिया ने।
4: बिल्कुल जी, बहुत सारे सिलसिले यहो जे जागरूकता दे, बहुत सारे सिलसिले सेहत संबंधी, बहुत सारे मनोरंजन संबंधी, अलग अलग विषयों प्रति जो जानकारियां असी लैके आउंदे हां, अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग उम्र के लिए, वो एक जिम्मेदारी ना आकाशवाणी पिछले 90 साल तो निभा रहा है। तो 90 साल का जो ये आकाशवाणी का बहुत ही खूबसूरत तो बहुत ही शानदार सफ़र है, वो इस तरह अगे भी इस तरह ही चलता रहेगा। इसलिए साढ़े स्रोतियों का साथ होना बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल, साथ तुसी दिंदे रहियो ते असी सोहने सोहने सिलसिले जागरूक करने वाले तुहाडे लई लैके आउंदे रहांगे। ते जी पूनम, अगला सिलसिला जिहड़ा है ना, वो साढ़े ढिड दे नाल, साढ़े दिल दे नाल जुड़िया होया, साढ़े स्वाद दे नाल।
4: जी, यानी कि अज दा जिहड़ा खास सिलसिला है पकवान, ते पकवान सिलसिले तहत ना अज असी अपने सुनण वालों दस दिए कि उन्हां पकवानां दी गल करनी है जो गर्मी दे विच ठंडक का एहसास बन के आते हैं, क्योंकि जो मौसम बदलता ना तो मन करता है कुछ ठंडा खाया जाए, जिस नाल कि साढ़े पेट में भी ठंडक मिले ते असी ठंडक भी महसूस कर सकीए, गर्मी तो राहत महसूस कर सकीए, ते जो पचाउण दे विच भी आसान होवे।
5: बिल्कुल सही है। ते जिहड़ा पहला पकवान मैं पेश करन जा रही हां वो मुहब्बत दे नाल जुड़िया है, मुहब्बत शरबत।
4: क्या बात
5: मुहब्बत शरबत दे वास्ते तुहानू चाहिए है दुध, चीनी, तरबूज, रूह अफ़ज़ा।
4: अच्छा,
5: इन्हां चीज़ां की लोड़ है, बहुत ये आम घरां दे विच मिल जांदे, क्योंकि तरबूज असीं खाण नूं लेके आउंदे आ, है ना
4: जी।
5: तां असीं सब तो पहले की करने कि डूंगे दे विच दुध लै लेना है, दुध विच मिक्स कर लेनी है थोड़ी जी चीनी, और उस तो बाद असीं रूह अफ़ज़ा मिक्स कर लेना है।
4: ठीक है,
5: ते इहदे विच गूंद कतीरा भी पा सकते हो, जिवें कि सारे जानते हैं कि गूंद कतीरा सेहत लई बहुत ठंडा फायदेमंद हुंदा है।
4: बिल्कुल,
5: खास करके गर्मियों विच इस दी वरतों नाल कई तरह के पीण वाले पदार्थ ते मिठाइयां बनदियां ने, पर जेकर तुसी इहनूं तरीके सिर लउंगे, यूज़ करूंगे, तो मैनूं लगता है कि गर्मी तुहाडे आस पास भी नहीं फटकेगी। सो गूंद कतीरा लैणा, इस तों बाद असीं की करना, तरबूज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने ने।
4: ठीक है,
5: और इहनां नूं बरीक टुकड़िआं विच पा देना है। जेकर तुसी पसंद करदे हो 4 मग्स है ना, तो उन्होंने भी मिक्स कर लेना है। सो ये ड्राई फ्रूट्स तुसी पा सकते हो ग्राइंड करके, दरदरे करके, तो जी तैयार हो जाता है मुहब्बत शरबत।
4: बहुत वधिया।
5: तुसी जानोगे कि ये दिल्ली दे विच काफ़ी महंगा विकता है।
4: अच्छा।
5: तो चांदनी चौंक के उत्ते काफ़ी स्टॉल्स लगिया होंगे ने कि मुहब्बत शरबत आके पी लो। सो तुसी घर दे विच भी बना सकते हो।
4: ठीक है जी, तो इस नाल जो असी पिलावांगे ना बना के, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਰ ਪਨਪੇਗੀ।
5: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਬਤ, ਉਹ ਹੈ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ।
4: ਠੀਕ ਹੈ,
5: ਗੂੰਦ ਕਤੀਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਜੂ, ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਮਗਜ਼, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਿਓ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਭਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ
4: ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਭਿਉਂਦੇ ਹਾਂ,
5: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੂ, ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਮਗਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਡੂੰਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਣੇ ਨੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੀਜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਸਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਮਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦਰਦਰਾ ਹੀ ਪੀਸਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿਉ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਸਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੇਸਰ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ 1 ਵਜਣ ਵਾਲਾ ਆਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। सबसे पहले सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन सुश्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना रुझानों में तय नजर आ रहा है। विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 191 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। तमिलनाडु में कोलातूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लिकेणी सीट पर आगे हो गए हैं। अभिनेता और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय पेरुम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। केरल में धर्मादम सीट से मुख्यमंत्री और सीपीएम उम्मीदवार पिनराई विजयन ने बढ़त बना ली है। नेमोम सीट से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं। एक सीट AINRC, एक सीट भाजपा और एक सीट डीएमके ने जीती है। AINRC 8 सीट, भाजपा 1, कांग्रेस गठबंधन 1, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 1 और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। भाजपा का राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना तय है। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जो 98 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य उम्मीदवार 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एनडीए के लिए 100 से करीब सीटें जीतने का भरोसा व्यक्त किया था पहले ही, जो सही साबित हो रहा है। क्या कहना है आपका?
2: जी, आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि एनडीए जो है लगभग 100 की सीटें जो है ना वहां पर आगे चल रही हैं यहाँ पर। और मेजर सीट्स की बात करें जहां पे कॉन्टेस्ट होना, जो कांग्रेस की जो मेन कैंडिडेट्स है जैसे गौरव गोगोई जोरहाट से, वो कुछ ट्रेलिंग है, वो कुछ पीछे चल रहे हैं 16,000 वोटों से,
1: जबकि उन्होंने कहा था कि वो 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस।
2: हाँ, लेकिन वो खुद यहाँ पे आफ्टर 10 राउंड के बाद, जो 14 राउंड होंगे, 10 राउंड के बाद वो खुद 16,000 वोट से पीछे हैं। जो हितेंद्र नाथ वहाँ के जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए है, उनका घर माना जाता है, वहाँ पे गया गौरव गोगोई, वहाँ से लड़े, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बातें भी चल रही थी गौरव गोगोई विल विन द सीट, बट द थिंग इज यहाँ पे थोड़े अलग ही जा रहे हैं।
1: राकेश जी, ये बताइए,
2: अखिल गोगोई की भी बात करें, अखिल गोगोई जो है, अखिल गोगोई जो एक लीडर जो है ऑपोजिशन के मेन वन ऑफ द लीडर, जो अखिल गोगोई वो मार्जिनली भी आगे हैं, जो बट इट इज इन द फिफ्थ राउंड में है। यहाँ पे 20 राउंड होंगे शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मार्जिनली आगे हैं 900 वोट्स में, और वहाँ आगे जाना बाकी है। और जो बहुत डिस्कशन का जो था एक टॉपिक, दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ प्रद्युत बोर्दोलोई जो कांग्रेस के नेता थे, जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने दिसपुर ज्वाइन, बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने में उनको टिकट दिए गए, बातें चल रही थी कि लोग उनको

0: एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बात यहाँ पर देखें, देखा जाए तो ओवर 35,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं मेरा वोट।
1: धन्यवाद, धन्यवाद राकेश
0: जी।
1: चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डॉ. गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में 2 के परिणाम मिल गए हैं। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती।

0: जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में 2 के परिणाम मिल गए हैं। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से भाजपा ने 2 सीटें जीत ली हैं और 2 पर बढ़त बनाए हुए है। धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जहर चक्रवर्ती विजयी रहे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर 77,308 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की वृद्धि के साथ 24,118 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 1:05 वज रहे ने। आओ हुण तुहानू साडे दिन विच प्रसारित होण वाले बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स ते उहनां दा प्रसारण समां दस दईए।

रात 7:40 ते विविधा प्रोग्राम च एक हिंदी वार्ता सुनाई जाएगी, मेरी नई कहानी। वार्ताकार होंगे हरदीप सबरवाल। इस वार्ता तो बाद कुछ गजलां भी समाप्त फरमाओगे। रात 8 सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है, ते रात 9:30 पंजाबी नाटक सुनवाया जाएगा। रात 10:02 ते कवि गोष्ठी दा आनंद मानोगे, ते फिर रात 10:30 कुछ गजलां समात फरमाओगे। मुख्य समाचार

0: आदाब, ये
1: आदाब,
0: आकाशवाणी है,
1: ये
0: खबरों के
1: आकाशवाणी
0: साथ
1: है,
0: मैं कौनैन
1: खबरों के
0: हैदर।
1: साथ मैं कौन है।
0: पहले इस वक्त की खास
1: पहले
0: खास
1: इस वक्त
0: खबरें।
1: की खास खास
0: मगरबी
1: खबरें।
0: बंगाल में
1: मगरबी
0: बीजेपी
1: बंगाल में
0: शानदार
1: बीजेपी
0: कामयाबी
1: की
0: की
1: शानदार
0: तरफ बढ़ रही
1: कामयाबी
0: है।
1: की तरफ
0: दो
1: बढ़
0: सौ
1: रही
0: तिरानवे
1: है।
0: सीटों में
1: दो
0: से
1: सौ तिरानवे
0: बीजेपी को
1: सीटों
0: एक
1: में
0: सौ
1: से
0: तिरानवे
1: बीजेपी
0: सीटों
1: को
0: पर
1: एक सौ
0: सबका
1: तिरानवे
0: हासिल
1: सीटों
0: है,
1: पर सबका
0: जबकि
1: हासिल
0: तृणमूल
1: है,
0: कांग्रेस
1: जबकि तृणमूल
0: छियानवे
1: कांग्रेस
0: सीटों पर आगे
1: छियानवे
0: चल रही
1: सीटों पर
0: है।
1: आगे चल रही
0: आसाम
1: है।
0: में राय दहिंदगान ने
1: आसाम
0: फिर
1: में
0: से
1: राय
0: बीजेपी
1: दहिंदगान
0: में
1: ने फिर से बीजेपी
0: एतमाद
1: में
0: का इजहार किया
1: एतमाद
0: है।
1: का इजहार किया है।
0: तमिलनाडु में अदाकार से
1: तमिलनाडु में
0: सियासतदान
1: अदाकार
0: बनने
1: से
0: वाले विजय की
1: सियासतदान बनने
0: पार्टी
1: वाले विजय की
0: टीवीके ने
1: पार्टी
0: शानदार
1: टीवीके
0: शुरुआत
1: ने
0: की है।
1: शानदार शुरुआत
0: हुकमरा
1: की है।
0: डीएमके तीसरे
1: हुकमरा
0: मकाम
1: डीएम
0: पर
1: के
0: चली गई
1: तीसरे
0: है।
1: मकाम पर चली गई
0: वजीराला
1: है।
0: एम के स्टालिन
1: वजीराला एम के
0: पीछे चल
1: स्टालिन
0: रहे हैं।
1: पीछे चल रहे हैं।
0: केरलम में कांग्रेस
1: केरलम
0: की
1: में
0: जेर कयादत
1: कांग्रेस की
0: यूडीएफ
1: जेर
0: बाएं
1: कयादत
0: बाजू
1: यूडीएफ
0: महाज के
1: बाएं
0: एलडीएफ
1: बाजू
0: को
1: महाज
0: पीछे
1: के
0: छोड़ते
1: एलडीएफ को
0: हुए
1: पीछे
0: वाजे
1: छोड़ते हुए
0: अक्सरियत की सम्त
1: वाजे
0: बढ़ रही
1: अक्सरियत
0: है।
1: की सम्त बढ़ रही है।
0: पुदुचेरी में एनडीए फिर
1: पुदुचेरी
0: से
1: में
0: इकतदार
1: एनडीए
0: हासिल
1: फिर से
0: करने की जानिब
1: इकतदार हासिल
0: गामजन
1: करने
0: है
1: की जानिब
0: और
1: गामजन है।
0: असेंबली जिम्नी
1: और
0: इंतखाबात
1: असेंबली
0: में
1: जिम्नी
0: बीजेपी ने
1: इंतखाबात में
0: त्रिपुरा और
1: बीजेपी ने
0: नागालैंड
1: त्रिपुरा
0: में
1: और
0: एक एक
1: नागालैंड
0: सीट
1: में
0: जीती है,
1: एक एक सीट
0: जबकि
1: जीती है।
0: गुजरात
1: जबकि
0: महाराष्ट्र और
1: गुजरात
0: कर्नाटक
1: महाराष्ट्र
0: में
1: और
0: उसे
1: कर्नाटक
0: सब
1: में
0: कथा हासिल
1: उसे
0: है।
1: सब कथा हासिल है।
0: अब खबरें तफसील से। चार रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में वोटों की गिनती के इब्तदाई रुझान सामने आ रहे हैं। ताज़ा रुझान के मुताबिक मगरबी बंगाल में बीजेपी ने शानदार सबकत हासिल कर ली है, जबकि तमिलनाडु में अदाकार सी जोसेफ विजय की सरबराही वाली नई पार्टी तमिलगा वेतरी कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जबकि ओपोजिशन की ऑल इंडिया अन्ना डीएमके दूसरे मकाम पर है और हुक्मरान डीएमके पार्टी तीसरी ओपोजिशन पर चली गई है। केरलम में कांग्रेस की जेर कयादत यूडीएफ आगे चल रहा है, जबकि आसाम में हुक्मरान बीजेपी ने बड़ी सबकत हासिल कर ली है। मगरबी बंगाल में आज असेंबली के 293 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है और बीजेपी को 193 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। नई पार्टी टीवीके ने 111 सीटों पर सबकत हासिल करके शानदार शुरुआत की है। ओपोजिशन ऑल इंडिया अन्ना डीएमके को 55 हलकों में सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान डीएमके पार्टी 49 सीटों पर सबकत के साथ तीसरे मकाम पर है। आसाम में 126 सीटों में से 7 सीटों के नतीजों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं और 73 पर उसे सबकत हासिल है, जबकि उसकी इत्तेहादी आसाम गण परिषद को एक सीट पर कामयाबी मिली है और 8 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को 24 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि 10 सीटों पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। केरलम में 140 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 5 सीटें जीती हैं और 57 हलकों में उसे सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान सीपीएम को 4 सीटों पर कामयाबी मिली है और 23 सीटों पर वो आगे चल रही है, जबकि उसकी इत्तेहादी सीपीआई को 9 सीटों पर सबकत हासिल है। केरला कांग्रेस 7 पर और बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। पुदुचेरी से भी नतीजे मिल गए हैं। अब तक 13 नतीजों का ऐलान किया गया है। हुक्मरान एआईएनआरसी ने 6 सीटें जीती हैं और 4 पर उसे सबकत हासिल है। कांग्रेस को 1 सीट मिली है और 6 सीटों पर वो आगे चल रही है। डीएमके पार्टी ने 1 सीट जीती है और 3 पर सबकत हासिल है। बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं और 2 पर ही उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अब ताज़ा मालूम के लिए हम अपने नामा निगार सुशील चंद्र तिवारी से बात करते हैं। जी
1: देखिए
0: सुशील,
1: कानून
0: बताइए क्या
1: जुनूबी
0: ताजा सूरत हाल है।
1: हिंदुस्तान के देखिए कानून जुनूबी हिंदुस्तान के इस सूबे में जो इस वक्त तक हालात नजर आ रहे हैं, ताजा हालात जिन्हें कहें तो...

0: जो फिल्म स्टार विजय हैं उनकी पार्टी टीवी के वो जबरदस्त जीत हासिल करती नजर आ रही है, और जैसा कि रुझानों से साफ नजर आ रहा है कि वो 100 से ज्यादा सीटें हासिल करती हुई दिख रही है। हालांकि यहाँ जो अक्सरियत है वो 118 सीटों पर तय होती है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब कुछ शाम तक नतीजे आएंगे पूरी तरह से, तब जो है तस्वीर ज्यादा साफ हो पाएगी। विजय की एंट्री जो है वो यहाँ के सियासी जो माहौल है उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से रही है, ये साफ नजर आ रहा है कि लोगों ने बदलाव को वोट दिया है। जी
1: इस मालूमात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के तर्जुमान तोहिन सिन्हा ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के इब्तदाई रुझानात बीजेपी के हक में हैं और पार्टी जबरदस्त फर्क के साथ आसाम और मगरबी बंगाल में कामयाबी हासिल करने की जानिब गामजन है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जनाब सिन्हा ने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम ने तृणमूल कांग्रेस की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी के एक और तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के रुझान बीजेपी के हक में सामने आ रहे हैं। जनाब त्रिवेदी ने कहा कि इनसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दूरंदेशी पर मबनी नजरिए और रियासत में बीजेपी कारकुनों की अनथक कोशिशों की अक्कासी होती है। बीजेपी के लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव ने असेंबली इंतखाबात में तारीखी मैंडेट देने पर आसाम और मगरबी बंगाल के लोगों के तई तशक्कुर का इजहार किया। मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम में असेंबली इंतखाबात के इब्तदाई रुझानात के तनाजुर में बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा है कि बीजेपी मगरबी बंगाल में तारीखी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पहली बार मगरबी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। जनाब पूनावाला ने यह भी कहा कि बीजेपी आसाम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में मुकाबला एनडीए और टीवी के पार्टी के दरमियान है।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
1: इधर कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने इब्तदाई रुझानात पर तबसरा करते हुए कहा कि ये शुरुआती रुझानात हैं और जल्द ही पूरी तस्वीर वाजे हो जाएगी और इसके बाद ही नतीजों के बारे में कुछ कहना मुनासिब होगा।
3: दो ढाई घंटे बाद जब स्थिति और क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, तब बात करने में ज्यादा आनंद आएगा। हर राज्य के लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी दो राउंड हुए या तीन राउंड हुए होंगे, 20 राउंड बाकी हैं हर असेंबली में, तो इतनी जल्दी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के ताज़ा रुझानात में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की कारकर्दगी से जाहिर होता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा है। पांच रियासतों के 7 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती का सिलसिला भी जारी है। इनमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में दो दो असेंबली हलके और गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड में एक एक असेंबली हलका शामिल है। ताज़ा नतज के मुताबिक बीजेपी ने 2 सीटें जीत ली हैं और 3 हलकों में उसे सबकत हासिल है। कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक एक सीट पर आगे चल रही हैं। त्रिपुरा के धर्मानगर हल्के में बीजेपी के जहर चक्रवर्ती ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अमिताभ दत्ता को 18,290 वोटों के फर्क से हरा दिया। नागालैंड के कोरिदांग असेंबली हलके में बीजेपी के दाउचिर आई इमचेन ने आज़ाद उम्मीदवार तोशिकाबा को 3,123 वोटों से शिकस्त दी। कर्नाटक में बीजेपी के श्रीनिवास टी दास करियप्पा देवनागरी साउथ हल्के में आगे चल रहे हैं, जबकि बागलकोट में कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलप्पा मेती 17,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटन्स को 164 रन का जीत का निशाना मिला था, जिसे उसने 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। एक दूसरे मैच में हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल में बीजेपी शानदार कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। 213

0: 93 सीटों में से बीजेपी को 193 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। आसाम में राय दहिंदगान ने फिर से बीजेपी में एतमाद जाहिर किया है। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार शुरुआत की है। हुक्मरान डीएमके तीसरे मकाम पर चली गई है। वजीर आला एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के जेर कयादत यूडीएफ बाएं बाजू के एलडीएफ को पीछे छोड़ते हुए वाज अक्सरियत की समत बढ़ रही है। पुदुचेरी में एनडीए फिर से इक्तदार हासिल करने की जानेब गामजन है और असेंबली जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने त्रिपुरा और नागालैंड में एक एक सीट जीती है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਲਓ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आ गए। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहाँ 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
2: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर। और आर्टिकल जो इंसिडेंट है हुआ है उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। लैक ऑफ जॉब है और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है। और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था, जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरे तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट IUML ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपल सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के TM शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, IUML 22 और CPI 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में AINRC की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
3: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें, आज लगातार तीसरी बार सरकार, ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
1: भाजपा नेता GVL नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने

0: के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से दो के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉ रनोर पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, AIUDF 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई की हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
1: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
0: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम जी, और उनका भी योगदान रहा है जीत में।
1: जी, आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है। अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीस मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर आप हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं। दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घटक पार्टी है, जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेठ सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावणगेरे दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित बार बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई एम चेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमती वापांग को 3633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। AIADMK 58, DMK 47, PMK 5, कांग्रेस 4, CPI 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या AIADMK की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
2: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो

0: पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खास तौर पे नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो लगभग 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था। उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
1: धन्यवाद, धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ?
2: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताओ कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वहीं लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही है। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दसम पातशाह महाराज ने इस जंग की वार्ता अपनी कलम नाल हिंदुस्तान के बादशाह नूं आप दसी है। कहिंदे हिंदुस्तान के बादशाह मैनू चमकौर की जंग लड़न का स्वाद आ गया, जदों तेरा नार खां मारिया गया, फिर तेरा गनी खां जरनैल मेरे सामने आया मारिया गया, फिर ख्वाजा मरदूद आया वह मेरा तीर चलन तो पहला पौड़ी समेत पिछे डिगया। मैं वेख्या उहनू सिपाही चुकी जांदे सन, मैनू यकीन है बचिया वह भी नहीं होगा। इस तो पिछों एक होर जथा कलगियां वाले पातशाह दे हुक्म नाल जदों चमकौर साहब की हवेली तो बाहर जाके लड़िया वह शहीदी पा गया। उस तो पिछों कलगियां वाले पातशाह दा वड्डा पुत्र साहबजादा अजीत सिंह कहिंदा कलगी वाले पातशाह महाराज हुण मैनू भेजो इत्थे महाराज सच्चे पातशाह दे पुत्र दी बाबत। शीतल जी लिखदे ने वाल वाल है मेरा निहाल होया सुन के तेरे ख्याल अजीत सिंह आ, सच्ची पुछे ता कीता जवान तैनू इस वास्ते पाल अजीत सिंह आ, खेडण बाल जो तेग दी पगड़ खूंडी सिरिया इउं अछाल अजीत सिंह आ, तीरां नाल छाती लीरो लीर हो जाए मारे अगां इछाल अजीत सिंह आ। उस वेले दा सरकारी रिपोर्टर लिखदा है जदों कलगियां वाले पातशाह दा वड्डा पुत्र आ के किले तो बाहर शहीदी पा गया, लड़के वैरियां दे नाल कलगियां वाले पातशाह ने जंकारा छड्डिया। वारी आ जाती है छोटे पुत्र साहबजादा जुझार सिंह दी, पिता तो आग्या मंग के चमकौर साहब दे मैदान विच लड़ जाके जिवें लड़के शहीदी पाउंदा है। उस वेले दा सीन इउं बयान कीता जा रहा है।
1: चढ़ पिया पुत दशमेश दा लै गए साथी नाल वरदी अग दो पासे ओ सुनो अगे दा हाल
0: वेखो जंग नू जुझार सिंह चलिया पुत गुरां ने शिंगार के तकलिया रोब जावे ना बहादुर दा चलिया सोच दस दी ये बात मैं सुनावा सच दी डोरू नारद वजावे उथे मौत नच दी
1: चिल्ले चाड़ के उड़िया से तीर मारदा केड़ा वार चल सके ओदे वारदा मच्छी पानी ते तरे जो तेग तारदा जड़ा खनाए हो वेखिया सी कहिंदा गल नू उथे आप ताप पै गई वैरियां दे दल नू
0: हट छड़ दिते वैरियां दे पुत्ता ने मंगी गर्मी सियाल दियां रुत्तां ने साथ रूहां नौ त्याग दिते बुत्तां ने पिछे रहना परवाने वेग शमा मच दी डोरू नारद वजावे उथे मौत नच दी
1: जिहड़ा सामने आवे ओह सुक्का जावे ना तेग मारदा जवान पल लावे ना वीर वीरां दी को जिंद नू बचावे ना लगी अग सौर दी जो कानियां दे चल नू उथे आप ताप पै गई वैरियां दे दल नू
0: पल पहला सी जो आप विच हस दे लगे भजन ना दूजिया नू दस दे तीर नागा वांग जोधिया नू डस दे गल हो के रहिंदी जेड़ी कादर नू जचदी डोरू नारद वजावे उथे मौत नचदी
1: जिवें मारदा पलेर ठोड बार नू।

जो किशन रुपे जी है राजपुर है, तो हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह, धर्मवीर, जगजीर सिंह। अगली चिट्ठी पे जी सन मुक्सर, तो बाबू सिंह दीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत, निशु एंड भुपिंदर। पटेल नगर मलोड़ तो पे जी सन चिट्ठी, राम रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरचू। अगली चिट्ठी पे जी सानू नाभे तो सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमन्नत। इन्हां सारे दे बसंत असीं इकला गीत लगाण लगे हाँ सरबजीत चीमा की आवाज़ में, आओ सुनते हैं गीत।

गाना सुनना चाहुंदे हो तां तुसीं वी सानूं चिट्ठी पा के अपना मनपसंद दा गाना सुन सकदे हो। साडा पता है चिट्ठियां मिठियां मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी जलंधर। एक साडा ही यह प्रोग्राम है जिस विच तुसीं चिट्ठी भेज सकदे हो। बाकी अजकल तो सारे काम मोबाइल ते ईमेल ते व्हाट्सएप नाल हो जाते ने। ठीक है जी, तो चलते हैं हुण अगली चिट्ठी ते जो कि सानू भेजी है जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह पाटिया एंजल पप्पी नवनीत पाटिया। महरामपुर तो भेजी है तरलोचन निक्की जसकीरत बिंदी लवली मीना गुरप्रीत फौजी मक्खन सिंह बूटा मनी कुलविंदर नीलम ज्योति सुरप्रीत नन्नू डब्बू नवराज सिंह दमनप्रीत सिंह। पिंड नकेरिया तो भेजी है कश्मीर सिंह सुखजीत सिंह अनमोल सहजप्रीत खुशप्रीत करतार सिंह ते सुच्चा सिंह। इन्हां सारे दी पसंद च असीं अगला गीत लगा लगे हाँ फिरोज खान की आवाज़ विच। आओ सुनते हैं गीत।

0: कवन गुन प्राण पत मिलाओ मेरी माई। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गुरमीत सिंह शांत अते उना दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जगवंत सिंह।
1: राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां एक ओंकार सत गुर प्रसाद कवन गुण प्राण पत मिलाओ मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे प्रदेशन दूर ते आई नाहन दर्ब न जोबन माती मोहे अनाथ की करहो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो फिरत तिसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक साध संग मेरी जलन बुझाई। ये पावन पवित्र गुर शब्द गुरु अर्जुन देव जी का

गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, जब सत्संग पए साधु जन, हृदय मिलया सांत मुरारी। आप जी सरवण कर रहे सो भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे दा गायन कीता होया ए शब्द।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत के साथ पहली बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं असम और पुदुचेरी में सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के इतिहास रचने की ओर है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 3 सीट जीत ली है और 2 पर आगे है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 202 सीटों पर बढ़त मिली है। इनमें से वो 20 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से

0: सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1, कांग्रेस 2 और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से अब तक 52 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 42 सीटें मिली हैं, जबकि उसके सहयोगी एजीपी को 3 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1-1 सीट मिली है। उपलब्ध रुझानों के अनुसार भाजपा 40, एजीपी 7 और बीपीएफ 5 सीट पर आगे है। कांग्रेस ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एआईयूडीएफ रायजोर दल को 2 और टीएमसी 1 सीट पर आगे है। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत हर कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुशासन के लिए भाजपा को वोट दिया है।
1: वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है। अगेंस्ट दिस वेस्ट बंगाल पीपल हैव गिवन ए वेरी वेरी क्लियर मैंडेट फॉर दी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुशासन के लिए एक मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में दिया है एंड पूरा कम्युनिस्ट मुक्त देश हो गया है।
0: केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम और रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत मिली है। कांग्रेस को 56 सीट मिली हैं और वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। उसके सहयोगी आईयूएमएल ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे है। सत्तारूढ़ सीपीएम को 24 सीटें मिली हैं, 2 पर आगे है। उसके सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे है। केरल कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है और 1 पर आगे है। भाजपा ने 3 सीट जीती हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने के लिए तैयार है। टीवी के 87 सीटों पर आगे है और 22 सीटों पर उसे जीत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके को अब तक 8 सीटें मिली हैं और 51 पर आगे है। एआईएडीएमके को 4 सीट मिली हैं, 41 पर आगे है। पीएम के 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार एन रंगास्वामी की एआईएनआरएस पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली है, 2 पर आगे है। भाजपा 2 सीटें जीत चुकी है, 2 पर आगे है। एआईएडीएमके और कांग्रेस 1-1 और डीएमके को 2 सीट मिली है, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 पर दर्ज हुआ। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है। दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लाओ सुनो साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम दे विच नाटक होया देस पराया दी 5वीं कड़ी सुनोगे। इस तो अलावा आड़ू ते उलूचे दी तुड़ाई ते मंडीकरण बारे सुखजीत कौर जवंदा होर नाल कीती गलबात सुनाई जाएगी। गीत संगीत होएगा कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा।

वार्ताकार होंगे हरदीप सबरवाल। रात 8 बजे सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

रात 10:02 सुनोगे कवि गोष्ठी। रात 10:30 चंद गजलां समात फरमाओगे। हिंदी पंजाबी ते अंग्रेजी खबरां आपो अपने समय मुताबक नशर कीतियां जाणगियां। एसी साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उहनां दा प्रसारण समां। आओ हुण सुणदे हां इक समूह गान।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: हाँ जी सिंगारा
1: जी
0: सिंह जी बचालियो अपना जिहड़ा लड़ीवार होया देस पराया नाटक
1: जी
0: इहदी पंजवीं किश्त
1: अच्छा
0: ये
1: जी
0: आपां सारे नाल सांझी करदे हां।
1: सुनाओ जी।
0: पेश है अवतार सिंह विलिंग दे नॉवल ते आधारित लड़ीवार पंजाबी नाटक होया देस पराया दी छेवीं कड़ी रेडियो नाटक रूपांतर बखशिंदर।

0: मैं क्या डॉक्टर सरूप सिंह जी, तुसीं खेती दा भविख दसण दे नाल नाल इह वी दसो भी चौहां पासियां तों घिरी अपनी जट कौम दा की बणू।
1: देखो जी, तुहानूं उदण वी दस्सिया सी दिशावां चार ने दस हुंदियां ने, कल साडा वर्तमान बन जांदा है, उही अगले दिन साडा भविख। देखो हालत इह है जी बई, साडे बुढ़ियां दा कल माड़ा सी ते साडा अज, वडेरियां दे कल तों पैड़ा, ते न्याणे दे भविख दा अंदाज़ा हिसाब किताब तुसीं आपे ला सकदे हो।
2: ते हुण सुणो इस लड़ीवार रेडियो नाटक दी छेवीं

0: यार उस दिन तो टेलर मास्टर तेज प्रकाश का सुपना हर वेले मेरे मन से सवार होया रहा है।
1: सच कहना सरूप सिंह, उदन का ही मैं भी सोची जाना भी बई असी वसदे केड़े देश हाँ।
0: इसका तत्सार तो यो होया कि सारी जमीन ते गुरु घर से भी गैरों का कब्जा होया ही लो, पंच सरपंच भी गैर पंजाबी बनिया करनगे। क्यों बई तुहानू की लगता इदा हो सकता है?
2: ओ होया ही पिया, ओ जे सारे ही छड़ छड़ बाहर भजी जावांगे आ गिनती का मामला है। आ साडे नहीं बाहरले मुल्कां च MLA जां मंत्री बनदे, उत्थे तां तुसीं ये देख सुन के चौड़े हो जांदे हो। आखे कनेडे च साडे 11 MLA है ते 7 MP भी हैगे है। आ टेलर मास्टर सच्चा रोंदा, UP बिहार वालियां दा कब्जा तां हो ही जाऊ भाई।
0: तां फिर यारो सुन लो गल मेरी ध्यान नाल, बंदा बेवस होने से अपना वसेबा छड़दा ते किरत दा तक्या ही अग्गे तो अग्गे तुरिया जांदा। पहली पातशाही ने सानू यह समझाया, सैकड़े साल पहला दरिया सतलुज के ढाए च इस पिंड की मोड़ी गड्ढन वाले वडेरे नू किरत खातर पुराना टिकाणा छड़ना पिया सी। उहदे वडेरे होर कई सदियां पहला बठिंडे संगरूर धूरी ते मुक्तसर के जंगली इलाके च भी किरत दे तक्के आए सी। हुण मित्रों मुकदी गल ये है बई साडे वडेरियां वांगू ही किरत की चाक च इत्थे आए इन्हां प्रवासियां ने तो आपां नू वसदे रख लिया। अरे इनकलाब मगरों जे प्रवासी ना आउंदे तां अपनी खेती खड़ जाणी सी। खन्ने लुधियाणे गोबिंदगढ़ दियां सारियां फैक्ट्रियां बंद हो जाणियां सीगियां। बई हुण भी जे ये ना होण तां अपणियां तों बहुतियां दे डंगर वच्छे भुखे मर जाण, पशुआं मगर गोहे कूड़े दे ढेर लग जाण, मोटरां दी राखी ये सौंदे आ। गल की अपनी सारी खेती तो चलती इन्हों प्रवासियों के सहारे ही है।
2: हाँ नाले होर तो होर साडे न्याणे ये खड़ाउंदे आ, उधर गोरियां दे न्याणे साडियां नूहां तियां खड़ाउंदियां।
3: हुण तो अपने सरकारी स्कूल भी इन्हां प्रवासियों के आसरे चलते आ, इन्हां दे न्याणे ही पंजाबी पढ़ते आ।
4: तुहाडे स्कूले को अपना न्याणा क्यों भेजू मास्टर जी, जदों अपने कोलों तो वोट बनाउण दा काम ही नहीं मुकना, नाले तुहाडे तां अपने बच्चे अंग्रेजी स्कूलां जांदे आ।
2: मास्टर देबो को इन प्रवासियों में से अपना स्कूल नज़र आ गया। वैसे टेलर साहब को भी सपने में इस स्कूल मास्टर का डेरा दिखा ही दिया होगा, क्या कहते हैं वैसे?
1: तुसी सही गैस लाया सरपंच मेजर साहब जी, टेलर मास्टर जिमीदार बनन दे सपने भी लैंदे होणगे।
2: गल बिल्कुल वाजिब करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अमला सिंह जी, सपना किसी को भी कैसा भी आ सकता है, क्या कहते हो?
4: तुसी घबराओ ना मेजर साहब, इन्हां दी नोक चोक इदां ही चलदी रहिंदी आ सारा दिन।
0: ओ करमिया।
5: हाँ जी।
0: ओ तैनू चंगे भले नू भर्ती अफसर भर्ती क्यों नहीं करदे?
5: मैं की दसां रैडी, इह तां मिलटरी वालियां दीआं हुजतां हैगीआं। कदे तेरा कद छोटा है, कदे तेरे फेफड़ियां च बलगम है, कदे तेरे कन्ना च मैल जम्मी है, कदे तेरी कसरत पूरी नहीं, हर बार कोई ना कोई नवा तोतकड़ा झाड़ के मोड़ दिते।
0: चल कोई ना, तू इसे गलों हुण कोई नशा ना करना।

0: शाबाश करमप्रीत सिंह, इसी तरह हर टेस्ट पास करते जाओ। अब मैं देखूंगा कि भर्ती अफसर तुम्हें कैसे भर्ती नहीं करेगा।
1: ए, तुम आठों के आठों लड़के एकदम आउट आउट, आपकी मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है।
0: डॉक्टर, व्हाट्स रॉन्ग विद ब्लडी मेडिकल रिपोर्ट? आज मैं बात खत्म करके जाऊंगा और देखूंगा कि ये सिकटू सा डॉक्टर अपने आप को समझता क्या है। इसे मालूम नहीं है कि पेंशनर ऑफिसर की रिस्पेक्ट क्या होती।
2: मैं क्या मेजर साहब, अपन इन मिलिट्री ऑफिसर है ना, खैब बनना थोड़ी। हाँ चलिए, छो खैर इन्हों जो बाजे बाजे बड़े कब्बे होंगे, सिरों पुठे बंदे, पुराने बुढ़े उन्होंने ओडा दे गदे क्या करते सी।
0: बिल्कुल जाहिल लोगों से पाला पड़ा है मेरा। नहीं नहीं, लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, पशुओं से। इनको तो इतना भी इल्म नहीं कि सूबेदार और मेजर साहब में क्या फर्क होता है। ब्लडी इडियट।

0: क्या नाम है आपके कैंडिडेट का साहब?
1: जी करमप्रीत सिंह।
0: करमप्रीत सिंह की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने साहब।
2: ये लीजिए सर, करमप्रीत सिंह, सन ऑफ सुरूप सिंह।
3: मैं जानना चाहता हूं कि इस छड़ी जैसे जवान में क्या कमी है।
0: देखने में ये आपको फिट लगता है साहब, पर हमें इंडियन आर्मी में नशेड़ी नहीं चाहिए मेजर साहब, हमें नशा रहित कंचन जैसी काया की जरूरत है।

0: देख भाई करमप्रीत, तेरी माँ ने मैनू तेरे सारे चाले दस दिते। वो कहती है भी तेनू हर तरह समझा के देख लिया, पर तू किसी कड़े बैठने नहीं तैयार नहीं।
1: नहीं डैडी जी, मैं तो मम्मी नू इहो कहा सी बे जे सुखजीवन पा दी डैथ हो गई तो उस च मेरा की कसूर है। जेड़े तुसी भाभी नाल मेरा मैड करना चाहते हो,
0: पहला तो तू उन्हूं भाभी भाभी कहना बंद कर। भाभी तेरी उदों तक सी जदों तक सुखजीवन उसका घर वाला सी। सुखजीवन नहीं रहा वो तेरी भाभी नहीं रही, समझ आएगा। बाकी रही है नैड वाली गल, ये नैड नहीं करके जहान का दस्तूर है। घर की इज्जत बार खजल खुआर होने नालों घर च ही रख ली जाए। आप ही तो कहना भी इसप्रीत नूं गहले वालियां नाल नहीं जान देना। उन्हूं रोकण दा इहो राह बई तू नरेंद्र कौर उत्ते चादर पा ले।
1: इसप्रीत मेरी मेरे भरा दी निशानी है, उसलिए मैं कुछ भी करने लई तैयार हाँ। भाभी यानी नरेंद्र दे संबंध भी जिदा तुसी कहो मैं करन नूं तैयार हाँ।
0: अच्छा वाशे हाँ कीती ना बरखुरदारा वाली गल, ऐदे मेरा क्या मंदा रहे तो अपना हाले भी कुछ नहीं विगड़िया।
2: कर्मे को ड्रगियों की बैड कंपनी से बचाना होगा स्वरूप सिंह।
0: मैं तो मेजर साहब एक गवा लिया, दूजे ने बचाने लिए अपने आप पूरी वाह ला रहा। कई बार लगता मेरी तकदीर ही माड़ी है।
2: नहीं नहीं स्वरूप सिंह, आज के जमाने में हर आदमी की तकदीर उसके अपने हाथों में है।
0: इन्हें नशे तो दूर करन खातर ही मेजर साहब मैनू समराले वेल्डर का कोर्स करन लाया सी। घरों तो मेरा सोना बना

0: ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਸੀ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਡੀਲਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਝੜੀ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ।
1: ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇ ਛੱਡ
2: ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਚਿੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਚਿੜੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਖਾਤਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
3: ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਪੂੜੀ ਫੜਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰ।
2: ਵਾਹ, ਚੱਕ ਪੂੜੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਾਹੂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ।
0: ਹਾਂ ਚੱਕ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਧੀਰਾ ਹੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ।
4: ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਨੀ ਭਰਨੇ, ਹੁਣ ਮਨ ਖਾਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਇਆ?
0: ਕੁਛ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਪੂਰਾ ਖਿਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾ।
5: सरदार स्वरूप सिंह, आप और हम मर्द हैं, हमें अपने बच्चों को माँ वाली नज़र से नहीं, बाप वाली यानी मर्द वाली नज़र से देखना शुरू करना होगा, क्या कहते हो?
6: मैं आपकी ये बात समझा नहीं मेजर साहब।
5: इसमें समझ ना सकने वाली ज़्यादा बात नहीं है सरदार स्वरूप सिंह। माँ को अपना बच्चा हमेशा बेकसूर और पाक साफ दिखाई देता है, जबकि उसके ऐब और नुक्स बाप को दिखाई देते हैं। माँ को जो प्योर सोना नजर आता है ना, उसमें मिलावट होती है, शुद्ध सोना बाप ही देख सकता है। आई बात समझ में, क्या कहते हो?
6: जी मेजर साहब, हुण तां चानण चानण हो गया।
5: अगले दिनों शाम के वक्त इस चिड़ी पर नजर रखनी है हमें। मैं हर शाम बच्चों को एक्सरसाइज और गेम्स करते सुपरवाइज करता हूँ। इसके साथ ही मैं दरख्तों के इस छोटे से जंगल यानी चिड़ी में आने जाने वालों पर भी नजर रखता हूँ। मैंने कर्मे को भी इस चिड़ी में जाते और फिर बाहर निकलते भी देखा है।

0: अंदर ड्रग वगैरह सप्लाई की जाती है स्वरूप सिंह? मुझे ये शक है, क्या कहते हो?
1: मैं आज से ही यहाँ पहरा देना शुरू करता हूँ मेजर साहब, कोई गलत नहीं।
0: इसका मतलब मेरा शक सही साबित हुआ स्वरूप सिंह, इन दरख्तों के इस झुरमट में ड्रग्स का बिजनेस किया जाता है और कर्मा भी इन लोगों के चंगुल में फंसा हुआ है और यहां से ड्रग की सप्लाई लेता है।
1: मेजर साहब, मैंने तो कर्मा को नशे से बचाने के लिए अपने परिवार की रहायश खूह पे कर देती थी, पर उस नशेड़ी ने इस बात का भी फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब क्या किया जाए मेजर साहब?
0: हमें कर्मे को डॉक्टर से बात करके रीहैब सेंटर में एडमिट करा देना चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस को ड्रग्स के इस अड्डे की सूचना देनी चाहिए। आप कर्मे को रीहैब में एंटर कराएं, दूसरे फ्रंट पर मैं अपनी सरपंच वाली ड्यूटी निभाता हूं।
2: सुरूप सिंह वालों अपने परिवार की रिहायश खूह ते करन नाल कुछ चिर तां सुख सांद रही। आखिर नशेड़ियां ने खेतों विच ही डंडी पा के अपने शिकार करमे तक रसाई कर ही ले। करमा भी उन्हां दे गुझे इशारे ते खास आवाज़ां सुनदा जंगल पौनी जाण दे बहाने फसलां विच ही अगे तो अगे निकल जांदा। वो पता नहीं किन्ना किन्ना चिर खेतों विच ही लुकिया रहिंदा। कई वारी वह कई कई दिन खूह वाले घर ना मुड़ता। करमे ते सुरूप सिंह दे परिवार नाल की बनदा है, ये आपां नाटक की 7वीं कड़ी विच सुणांगे।

बात करने के सलीके से झलकती है। वास्तव में वह इस कक्षा की राजकुमारी की तरह है। लड़की ने एक कविता सुनानी शुरू की। तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट ना मिली, रोने लगी। ड्राइवर कहता, आजा मेरे पास। तितली बोली, हट बदमाश। सभी बच्चे ताली बजाने लगे, लेकिन छोटा लड़का अभी भी परेशान था। विस्मय में चारों तरफ देखते हुए उसने अपने सहपाठी से फिर पूछा, यह ड्राइवर तितली को क्यों छेड़ता है? सहपाठी को अब और भी अधिक मजा आया। उसने अपनी कोहनी को उसकी कमर में जोर से मारा और हंसते हंसते पेट के बल हो गया। बच्चे को कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन इससे भी कहीं अधिक दर्द उसके दिमाग में हो रहा था। सर जी, मैं एक चुटकुला सुनाऊं? तीसरी पंक्ति में बैठे एक लड़के ने पूछा। यह लड़का कक्षा में पढ़ाई में सबसे पीछे और शरारत में सबसे आगे है। कक्षा में शोर मचाने वाले बच्चों में से सबसे ऊपर। हाँ बिल्कुल, तू भी कोई अच्छा चुटकुला सुना, अध्यापक जी ने स्वीकृति देते हुए कहा। लड़के ने चुटकुला सुनाना शुरू किया। एक लड़का अपनी माँ से कहता, मम्मी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? माँ, बेटा मैंने तुमसे कब झूठ बोला? मम्मी आप तो कहती थी कि मेरी छोटी बहन परी है। हाँ बेटा, झूठ मत बोलो माँ, मैंने उसे छत से नीचे फेंक दिया और वह उड़ ही नहीं पाई। माँ, हाय कहाँ फेंक आया लड़की को? पूरी क्लास हंस रही है, हंस हंस कर पेट के बल हो रही है। लेकिन लड़का और भी परेशान हो गया, मानो वह रोने ही वाला था। उसने अपने सहपाठी से पूछा, क्या उसकी बहन को बहुत चोट लग गई? सहपाठी का चुटकुले का आनंद बर्बाद हो गया। उसने गुस्से से बच्चे को धक्का दिया और कहा, चल जा भाग यहाँ से। अब और कौन चुटकुला या कहानी सुनाएगा? शिक्षक ने बच्चों से पूछा। सर, क्या मैं एक चुटकुला सुना सकता हूँ? कक्षा में सबसे मजबूत बच्चे ने हाथ खड़ा करके पूछा। यह बच्चा कक्षा का सबसे अधिक मजबूत और अघोषित रूप से पूरी कक्षा, विशेषकर कक्षा के लड़कों पर शासन करता है। हाँ जरूर, तू भी कोई अच्छा चुटकुला सुना, शिक्षक ने प्रोत्साहित किया। बच्चे ने उत्साह भरी आवाज़ में चुटकुला शुरू किया। एक बार तीन नशेड़ी आपस में बात कर रहे थे। पहले नशेड़ी ने कहा, भाई मैं अब गांव के बाहर ज़मीन खरीद लूँगा और खेती शुरू कर दूँगा। तुम किस चीज़ की खेती शुरू करोगे? दूसरे नशेड़ी ने पूछा। मैं गन्ने की खेती शुरू करूँगा, पहले नशेड़ी ने कहा, और गन्ने की फसल बेचकर मैं खूब पैसा कमाऊँगा। भाई तुम गन्ने की खेती करके पैसा नहीं कमा सकते, तीसरे नशेड़ी ने जैसे अपना फैसला सुनाया। तुमने ये बात क्यों कही? पहले वाले ने पूछा। और नहीं तो क्या, गांव वाले तेरे खेत में गन्ने रहने देंगे? वो पूरे खेत से गन्ने उखाड़ उखाड़ कर चूसने के लिए ले जाएंगे, तीसरे नशेड़ी ने बताया। गांव वालों की इतनी हिम्मत, उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, पहले नशेड़ी ने गुस्से में कहा। क्यों ना हम पूरे गांव को आग लगा दें? हाँ चलो, हम मिलकर पूरे गांव को आग लगा देते हैं, तीनों ने फैसला किया। तीनों नशेड़ियों ने मिलकर गांव को आग लगा दी और एक टीले पर चढ़ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, और उखाड़ो गन्ने और चूसो गन्ने। कक्षा में जोर की हंसी फैल गई। बच्चे हंस रहे थे अत्यधिक आनंद में, शिक्षक भी हंस रहे थे। अचानक वो छोटा लड़का उठा और जोर से रोने लगा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, सर जी क्या आग में सारे गांव वाले जल गए? सभी बच्चे और शिक्षक विस्मय से उस बच्चे की ओर देखने लगे। एक पल के लिए कक्षा में सन्नाटा छा गया। शिक्षक ने अपने माथे पर त्योड़ी चढ़ाई और जोर से पूछा, क्या कहा तुमने? और शिक्षक जोर जोर से हंसने लगा। बाकी के कक्षा के बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगे। बच्चा बिल्कुल समझ नहीं पाया कि सब लोग क्यों हंस रहे हैं। वह यह समझ ही नहीं पाया कि छेड़छाड़, हिंसा और लिंग भेद जैसे अपराध हमारे चुटकुलों और बाल कविताओं में इतने सरल तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं कि यह किसी को अपराध की तरह प्रतीत ही नहीं होते, बल्कि इस हिंसा, यौन अपराध और लिंग भेद पर आधारित चुटकुलों का आनंद लिया जाता है। बाकी की कक्षा और शिक्षक को जैसे एक जीता जागता चुटकुला मिल गया था। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का झुंड अब जंगली भेड़ियों के झुंड में बदल गया था, जिनके हाथों में अचानक एक शिकार लग गया है और सभी की निगाहें उस पर लगी हुई हैं। बच्चे को सबने ऐसे घेर लिया जैसे भेड़ियों का झुंड अपने शिकार को घेर लेता है। और लिंग भेद, यौन अपराध, हिंसा का वार सहता हुआ, खून से लथपथ एक चुटकुला जमीन पर गिरा हुआ है, जमीन पर गिरा हुआ है। लघु कथा, पशु और इंसान। सुबह

0: कान का शटर खोला ही कि सामने डेयरी वाली ग्वालन बोल उठी, पिछली गली में रहने वाला रमेश है ना, वो मर गया। कौन रमेश? जो सुबह मंदिर का प्रांगण धोता है। भला चंगा तो था कल सुबह ही मिला, मैंने हैरान होते हुए पूछा। हाँ जी, वहीं कल मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था कि एक सांड ने उसे उठाकर पटक दिया, सिर दीवार में जा लगा और मौके पर ही मौत हो गई। ये म्यूनिसिपैलिटी वाले कर क्या रहे हैं? सारे शहर में इन आवारा सांडों और कुत्तों का आतंक मचा है, साथ वाले मल्होत्रा जी बोल उठे। जब से ये सरकार आई है तब से ही आवारा पशुओं का संकट गहरा गया है। शर्मा दल जी, शर्मा जी जो विपक्षी दल से संबंध रखते हैं, सहज ही मुद्दे को राजनीतिक रंगत देते हुए बोल उठे। ये शहर के लोग पता नहीं क्यों इन पशुओं को गलियों में फिरने देते हैं, हमारे गांवों में तो कोई आवारा पशु नहीं होता, ग्वाले ने मुद्दे को शहर बनाओ गांव करते हुए कहा। अब मेरा मुंह ना खुलवाइए बहन जी, मल्होत्रा जी खींचते हुए बोले, शहर वालों के पास खुद रहने की जगह नहीं, पशु क्या रखेंगे, ये सब आपके गांव वालों का ही किया धरा है। गायें बछिया हुई तो पाल ली दूध देगी, बछड़ा हुआ तो हाँक दिया शहर की ओर, बछड़ा घाटे का सौदा जो ठहरा। इंसान के स्वार्थ की परिकाष्ठा को परिभाषित करते हुए वो बोल उठे। सच में इन आवारा पशुओं ने जीना मुहाल कर दिया है, कुछ और आवाज़ें भी चर्चा में शामिल हो गई। मैं सोच रहा था कि लड़कियों की भ्रूण हत्या करने वाला इंसान, अगर उसके पास गाय के बच्चों की लिंग जांच के लिए कोई सुलभ तकनीक होती तो शायद एक भी बछड़ा जन्म न ले पाता। सचमुच इंसान से बड़ा पशु कोई नहीं, सचमुच इंसान से बड़ा पशु कोई नहीं।
1: हुणे तुसी प्रोग्राम विविधा तहत हिंदी वार्ता सुन रहे सी मेरी नई कहानी। वार्ताकार सन हरदीप सपरवाल, आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएस दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। चलो हुण चंदन दास दी आवाज़ च एक गज़ल समात फरमाओ।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ दोस्तों, जेकर सानू जिंदगी दी जंग जितनी है तो उदे रस्ते विच आने वाली हर औकड़ नू, हर मुश्किल नू, उस तूफान नू तो सानू घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत नाल उस तूफान च अपनी किश्ती नू किनारे रखने का हौसला रखना चाहिए ताकि जिंदगी नू असी अगे वधा सकीए। ते जदों असी कामयाब हो जाइए तो असी दौलत नू बचाने की बजाय अपने रिश्तों नू बचाइए, क्योंकि जिहड़ी खुशी सानू अपने नाल मिलती, अपने दे साथ नाल मिलती, वह खुशी पैसे नाल कदी नहीं मिल सकती। जे साडे च ठहराव है, धैर्य है, तो असी दुनिया की कोई भी चीज़ आसानी नाल पा सकते हैं। इस करके हमेशा सोच विचार करके हौसले नाल कुछ ना कुछ फैसला लेना चाहिए। तो आओ दोस्तों, प्रोग्राम जिंदगी हसीना नू अगे वधाउने आ ते अगला गीत तुहाडे लई आ रहा है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान तो। इस गीत नू गाया है मुकेश, लता मंगेशकर ते साथियां ने।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीद

आकाशवाणी निरंतर तो सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह एक नदी दी, नदी विच वहिंदे पानी दी फितरत है कि हमेशा अगे वधदा जांदा वहिंदा जांदा है। जिस तरह असीं उस पानी नूं एक वारी छूण तो बाद दोबारा नहीं छू सकते क्योंकि वह बहुत अगे वहिंदा वहिंदा निकल जांदा है, उस तरह ही जिंदगी का हर एक पल वो समा जिहड़ा निकल गया वह वापस नहीं आ सकता। इसलिए सानू हर एक पल नूं बड़े ही आनंद नाल, बड़े जोश नाल जीना चाहिए है, क्योंकि याद रहे कि जड़ा पल निकल गया वो पल वापस नहीं आना। जे किसी पल भी सानू कोई समस्या आ जाती है, कोई औकड़ आ जाती है, तो वह सानू घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वह इशारा है साड़ी जिंदगी विच कुछ वधिया बदलाव का, क्योंकि जो असी उस रुकावट नू, उस औकड़ नू दूर कर लैंदे हां असी हमेशा सफलता वाल अगे वधदे जाने हां। ते उस इशारे नू हमेशा बड़े आराम नाल, बड़े हौसले नाल दूर कर देना चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत करने वाले दी कदे भी हार नहीं हुंदी, हमेशा जित हुंदी है। ते आओ दोस्तों प्रोग्राम जिंदगी हसीना नू अगे वधाउने हां। ते अगला गीत तुहाडे लई आ रहा है किशोर कुमार की आवाज च, रोटी फिल्म तों।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आकाशवाणी जलंधर दे सुन रहे हो जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है ते प्रोग्राम विच अगला गीत आ रहा है संगीत फिल्म तो। इस गीत नू गाया है सुरेश वाडकर ते अनुराधा पौडवाल ने।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक।

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। दोस्तों जिंदगी च अगर सानू कदी कामयाबी नहीं मिलती असी असफल हो जाने तो सानू कदी भी उस ना कामयाबी दी या असफलता दी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी असफलता दी चिंता करते वो हमेशा असफल ही रह जाते हैं, पर जो लोग उस नाकामयाबी तो सीख के चिंता किए बगैर अगे वधदे ने हमेशा अगे वधदे रहिंदे ने ते सफलता उन्होंने कदम चुम लैंदी है। वैसे भी हमेशा याद रखो कि जिहड़ा तुहाडा संघर्ष का समां है वह बहुत छोटा है जिते तुसीं कल्ले हो, पर जदों तुसीं कामयाब हो जाते हो तो सफलता तो बाद सारी दुनिया तुहाडे नाल हुंदी है, तुहाडे पिछे हुंदी है। इस करके कदी भी असफलता तों ना घबराओ, बल्कि हौसले नाल एक नवा रस्ता देखो, नवी राह लभो। आओ दोस्तों प्रोग्राम नूं अगे वधाउने ते अगला गीत आ रहा तुहाडे वास्ते बेताब फिल्म तो। इस गीत नूं गाया लता मंगेशकर ते शब्बीर कुमार ने।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं।

0: रामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे, और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं, सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में एनडीए उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
2: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
0: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।

0: देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
2: आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी NDA सरकार है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
0: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव MA बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेन देन किए गए। ये

18 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: An election like none other, with unprecedented momentum and movement and a historic result at the end of the day. Welcome to this special program, Janadesh 2026 on Akashvani. We are covering and analysing the results of four states and one union territory. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor Sonu Sood.
3: धन्यवाद वैभव। और आज इस भारत राजनीति के महत्वपूर्ण दिन पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो अहम कहें कि पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं, प्रफुल्ल केटकर जी और मिस्टर केवी प्रसाद। आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: सो जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो विधानसभा चुनाव अप्रैल में हुए चार राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में, उनके रिजल्ट्स आए हैं। वेस्ट बंगाल आ रहे हैं रादर रिजल्ट्स, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। रिजल्ट का जो प्रोसेस है अभी भी काउंटिंग चल रही है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुदुचेरी। सो अगर हम शुरुआत वेस्ट बंगाल से करें, जिस पर बहुत सबकी नज़रें थीं और बहुत स्पर्धा थी इस चुनाव में, अगर मिस्टर केवी प्रसाद आपके पास आए तो क्या लगता है आपको, जिस तरह का जनमत आया है बीजेपी के फेवर में, 200 से अधिक सीटें, 294 सीट्स के जो असेंबली है उसमें इतनी बड़ी जो बहुमत आई है, किन उम्मीदों और किस विश्वास पर ये जनमत उनको मिला है, प्राप्त हुआ है, और भारतीय राजनीति के लिए आप इसको कितना बड़ा मील का पत्थर मानते हैं?
4: देखिए, एक तो 15 साल के जो शासन था ममता बनर्जी का, उसके खिलाफ, उनके विरुद्ध काफ़ी सारे समस्याएं थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बात कही थी जो कि मूल मुद्दा जिसे आप पूछें कि परिवर्तन लाएंगे हम पूरे प्रक्रिया में, उसमें मतलब बंगाल में, चाहे आर्थिक तौर से, चाहे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ले, तमाम सारे मुद्दे जो कि जनता से जुड़े हुए थे। और जनता, और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ 14 दिन का कैंपेन है, कि अगर आप देखें जब से लोकसभा ख़त्म हुआ उसके बाद से लगातार ये प्रयास चलता रहा
3: जी।
4: और विपक्ष के जो नेता हैं सुवेंद्र अधिकारी, वो भी सदन में, और वहाँ पर एक माहौल उन्होंने इस तरह का तैयार किया, और तो उस ये सब जुड़ता चला गया। और बंगाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक ज़माने में वामपंथियों का गढ़ माना जाता था, 34 साल तक उन्होंने लगातार 77 के बाद जब तक ममता ने उनको हराया नहीं तो वो जीतते रहे। तो ऐसे में उस किला को पहले ममता ने गिराया, अब ममता का किला को बीजेपी ने हिलाया।
3: जी बिल्कुल। सो 293 सीटें हैं यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी को 168 सीटों पर जीत प्राप्त हो चुकी है और 40 सीटों पर वह आगे चल रही है। जो प्रदेश है पश्चिम बंगाल, उसके भविष्य के लिए आप क्या, अब एक आशा है आपको, किस तरह के बदलाव आने की उम्मीद की जा सकती है?
4: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो परिवर्तन की बात की है, वो परिवर्तन तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उसमें उनको लग रहा था कि भाई जैसे कहें कि सबसे बड़ा सुशासन, और भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार बनाती है वो डबल इंजन सरकार की बात करती है, और शायद वो एक बंगाल के नागरिकों ने जिन्होंने चाहा कि सरकार बदले, तो उसका परिणाम हमारे सामने है।
2: मिस्टर केतकर, माय क्वेश्चन वुड बी टू यू, द प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट पेइंग अ डेट टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी, द मेंटोर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। ही टॉक्ड अबाउट द पब्लिक ट्रस्ट इन द परफॉर्म

0: मम्मी, ओ मम्मी, किथे रह गई हैं?
1: आई बीबी जी। हां जी, दसो।
0: तेनु किन्नी बारी क्या है कि मैनु बीबी जी ना क्या कर?
1: ना, बीबी जी ना आखा, ते और की बेबे जी आख्या करा?
0: शट अप, अनपढ़ गवार, इलिटरेट, मैनु मैडम कह के बुलाया कर, मैडम जी।
1: लो जी, साडा की है? असी ता नौकर जो होए, मैडम कह दिया करांगे, खुश?
0: गुड, नाले गल दस, इन्नी बन ठन के हर वेले पहला पौंदी रहनी है, तेनु होर कोई काम नहीं?
1: ओ बीबी जी, आए हाए, मैडम जी, पम्मी ने ता कोई एक सौक पालिया होया, मैडम जी, मैं ता पढ़ाई हत्थों मार खा गई, बस, वरना?
0: वरना?
1: वरना पम्मी ने फैशन दी दुनिया च अग ला देनी सी अग।
0: देखो तो सही, अंदर की रसोई च रख के आई है, कितने अग तो नहीं लग गई, कुछ जलन दी स्मेल आ रही है।
1: ओ मैडम जी, तुसी आप ही ता गैस उत्ते भड़थे वास्ते बताऊं रख के आए सी, ओही सड़े होने ने।
0: ओ फोत जा, फिर जल्दी जाके गैस ऑफ कर।
1: ओ जानी आ, तुस ते एवें करवा जांदे हो।
0: उफ माय गॉड, डैड ने किस निखट्टू दे लड़ ला दिता मैनू। इन्ना नहीं कि एक माइक्रोवेव भी लिया दे। सोचिया सी नैशनल हाईवे च जे ही लगे हुए हैं, खूब कमाई करते होने हैं, पर किथे? इन्हां नूं ते हर वेले ईमानदारी दा भूत चमड़िया रहिंदा है, ना आप खांदे है ते ना अपने अफसरां नूं खवांदे है, इस करके तो हाले तक प्रमोशन नहीं हुई, रह गए ना वही जे ते जे।
2: मैं क्या बबली डार्लिंग, की गल, बड़ा अपने जेई दा नाम जपदी पई है, आखिर इरादा की है?
0: इरादा है अपने पापा दे घर वापस चले जान दा।
2: की गल, सब सुख शांत है उथे?
0: उथे ते सब ठीक है, पर इत्थे कुछ ठीक नहीं है गारमान।
2: आखिर होया की है बबली?
0: हाले कुछ होया ही नहीं। ओके, हुण होएगा, जद मैं अपने पेरेंट्स दे घर चली गई ना हमेशा हमेशा वास्ते। पता नहीं तुहाडे करदे ने की सोच के तुहाडा नाम रखिया सी अरमान। देखो, उस बंदे दा नाम अरमान रख दिता जिदा लाइफ च कोई अरमान ही है नहीं, ना कुछ अच्छा खान दा अरमान, ना अच्छा पहनन दा अरमान, ना लग्जरी दा अरमान, ना कंफर्ट दा अरमान, बस करो ऑफिस।

0: तेरे घर वाले की प्रमोशन हो गई। सरकारी बंगला बड़ा सारा, सरकारी गड्डी बड़ी सारी, सरकारी नौकर बड़ा, मेरा मतलब डबल तनख्वाह। मौजा ही मौजा शाम सवेरे, हुण मौजा ही मौजा शाम सवेरे, हुण मौजा ही मौजा। ते गल की है, बस दो घंटे की गल है सारी। तू नौकरानी बन जा ते अपनी पम्मी बन जाएगी अपने अरमान दी बॉटी।
1: की क्या
0: भाई नकली, बस अरमान दे अफसर दे सामने नाटक करना। देख पुत्र तेरे घर वाले दी तरक्की दा सवाल है। बोल बोल पुत्र, करेंगी ड्रामा?
1: होर कोई चारा भी ते नहीं चाचा जी।
0: आ गुड कीता पुत्र, ग्लैड कीता। बस तू फटाफट जा ते बढ़िया बढ़िया डिशां बना ताकि अफसर ते ओदी मां उंगला चटते रह जान, ते जांदे जांदे आपे कह के जान।

0: 味吧。
1: 哇，इतना डिलीशियस खाना तो मैं अपनी पूरी लाइफ च नहीं खाता। आ मिस्टर रहमान, तुहाडी वाइफ दे हत्थां च ते जादू है वे जादू।
2: खाना तो साडी नौकरानी भी ठीक ठाक बनाई लैंदी है, पर तुहाडी नौकरानी ने तो 5-star होटल दा खाना भी फेल करता है।
1: मिस्टर रहमान, किथे है तुहाडी नौकरानी? भाई मेरा दिल करता है कि ओनू बख्शीश दित्ती जावे।
2: अरमान बेटा
3: जी, जी मां जी,
2: जे तुहानू इतराज ना होवे तो एक डिमांड करा।
3: दसो, हुक्म करो मां जी।
1: ओ मामा, तुहानू की चाहिदा?
2: देख बेटा, अपनी पढ़ाई दे चक्कर च ते फिर जॉब च बिजी होन कारण तू हाले तक मैरिज नहीं करवाई।
1: यस,
2: ते बहू तो सेवा कराउन दा मौका ही नहीं मिलिया मैनू तां। ते उपरो मर जानी अपनी नौकरानी भी पूरे हफ्ते वास्ते चली गई है अपने पिंड। सोच दिया मैं किथे इस उम्र च हाथ साड़ दी फिरांगी। इसे करके निकी जी डिमांड कर रही है अरमान को लो।
4: तुसी हुकम ता करो जी।
2: और कुछ नहीं जी, बस जदो तक साड़ी नौकरानी वापस नहीं आ जांदी ओदो तक तुसी अपनी नौकरानी साड़े नाल भेज दियो।
1: चाचा जी, इस बहाने असी भी 4 दिन वधिया वधिया डिशेस खा लवांगे।
2: हाँ।
1: क्यों अरमान
3: जी, ये किवें हो सकदा भला?
4: तुसी खाना खाओ जी, मैं पूछता हूँ नू जे मन गई तो भेज देंगे तुहाडे नाल।
3: चाचा जी
5: हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल। मैं कोई सच्ची मुच्ची दी नौकरानी नहीं हां जड़ी किसी दे भी घर जाके झाड़ू पोछा करन लग जा।
3: ट्राई टू अंडरस्टैंड बबली, समझण दी कोशिश कर प्लीज। ओ मेरे बॉस दी मां है, मैं उन्हें किवें मना कर सकता यार।
4: देख, आखिर तेरे अरमान दी प्रमोशन दा सवाल है।
5: चाचा जी मोच लते आचार।
4: बस एक बार अरमान दी प्रमोशन हो गई फिर बड़ा अफसर, सरकारी बंगला, सरकारी गड्डी, डबल तनखा, वाह जी वाह।
5: देख लो अरमान, सिर्फ एक हफ्ता। ओनली 1 week।
3: यस,
5: याद रखना मेरे इस एहसान नू।
3: केड़ी मुसीबत चो फसाता तुसी सानू चाचा जी?
4: ओ की होया?
3: पता नहीं बेचारी किस हाल च होएगी। मजबूरी ये है कि ना तो उन्हें फोन करके उदा हाल पूछ सकता ते ना ही जाके उदी दुर्दशा देख सकता। हुन दसो की करिए चाचा जी, लाओ कोई जुगाड़।
4: ओ जुगाड़ तो अपने हर वेले रेडी हुंदे ने अरमान, कोई आपा हुणे उन्हें जाके मिल आउने।
3: की कहांगे जाके? हैं भई मैं अपनी वाइफ नू ते तुसी अपनी नूं नू मिलन आए हो, सारी पोल खुल जानी है साडी। ते जे पोल खुल गई ना चाचा जी, ता प्रमोशन दी जगह उने कमबख्त अफसर ने डिमोशन कर देनी है मेरी डिमोशन।
4: अब पुत्र जी, ये सारा कुछ दा उदो होगा ना जे आपा पछाणे जावांगे।
3: की मतलब तुहाडा?
4: मतलब ये पुत्र भी आपा भेस बदल के जावांगे।
3: हैं?
4: भेस बदलन दा मतलब मेकअप दा सारा समान मेरे कोल है, सारे जुगाड़ हुंदे ने तेरे चाचे कोल। तू टेंशन ना ले, बस आजा तैयार हो ये तो फिर फटाफट मिल के आइए बबली नू।
3: चल ये भी सही।
2: वाह वाह, क्या बात है, किन्ना सुचज्जा काम कर दी है तू कुड़िए। मेरा ता घर लिशका दिता है तू।
5: थैंक यू।
2: ते उपरो खाना भी तू इतना स्वाद बनानी है के की दसा। मेरा ता दिल करदा है भई अरमान नु कह के तेनु अपने घर पक्की होई रख लवा।
5: हां लो मां जी, पूरा आधा किलो सूजी दा हलवा बना के दित्ता तुहाडे लई, ड्राई फ्रूट्स पा के।
2: वाह, जिउंदी रह कुड़िए, जिउंदी रह। मैं सोचा भई कीर्तन ते ता जाना ही है, प्रसाद भी घरों ही बना के ले जानी है। वाह, किन्नी खुशबू आ रही है सलवे चो, जेड़ा भी खाएगा निहाल हो जाएगा। अच्छा मैं चल दी हाँ, कीर्तन तो शुरू भी हो गया होना है, हाँ सच, अरमान कहंदा सी कि एसियां दी सर्विस करन वाले भेजेगा घर।
5: हाँ जी।
2: अरमान दी ड्यूटी लाई सी उन्हें एसी मकैनिक भेजन दी।
5: ठीक है।
2: सिर ते खलो के सारे एसियां दी चंगी तरह सर्विस करा लई। सुनिया, अच्छा मैं चल दी हां।
5: शुक्र है मगरों लथी, हर वेले तारीफा ही करी जाओगी, कुछ नहीं तो हुण चली जाओगी। मैनू मेरे अरमान दी प्रमोशन दी टेंशन ना हुंदी, पता नहीं बेचारा किवें उस फैशना पट्टी पम्मी दे हाथ दी बक बकिया सब्जियां खांदे होणे। बेचारा अरमान ते बेचारे चाचा जी। आई कौन है? हां जी दसो।
0: ओ जी एसी सर्विस करनी सी, अरमान साहब ने भेजियागा।
5: पर शक्लों तो तुसी एसी मैकेनिक नहीं लगदे, ड्राइवर लगदे हो, ओ भी ट्रकां दे।
4: ओ बेबी बंदे पामे असी देसी पर सेट कर देने बिगड़े तो बिगड़े एसी।
0: हाँ जी।
4: साडे कोल हरेक एसी नु सेट करन दा जुगाड़ है बीबी।
0: हाँ।
5: जुगाड़? ओ चाचा जुगाड़ी तुसी।
4: बीबी मन मेरा सन, मैं लेके आया तेरा अरमान।
5: ओ अरमान तुसी तो बिल्कुल भी नहीं पहचाने जांदे।
4: भाई आखर मेकअप दा जुगाड़ तेरे चाचे ने लगाया भी बबली।
1: बॉस दी माँ किथे है बबली?
5: ओ ता कीर्तन ते गई है, ते तुहाडा बॉस किथे है?
0: ओए ओ दफ्तर बैठा कमबख्त, तू ठीक ता है बबली?
5: पुछो ना कुछ भी, तुहाडे बॉस दी माँ ता हर वेले मेरी तारीफा ही करदी रहंदी है, ते तुहाडा बॉस ओ ता लट्टू होया पिया मेरे ते। गल्ला गल्ला च मेरे ना ब्याह करवाउण दे हिंट भी दिंदा रहंदा है, दिल फेक ऑफिसर।
0: देखी किते मेरी दुनिया ना उजड़ जाए बबली।
4: ओ लगदा ओ कोई आया बई, आ भी जाए ते आपा केड़ा पछाने जाना।
5: पछाने भी गए तो की कर लेंगे साडा, वद तो वद नौकरी तो कर देंगे ना अरमान नू। मैं ना सबक ले लिया, लोगों दे कपड़े सी लूंगी, कुकिंग स्कूल खोल लवांगी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी दा बिजनेस कर लूंगी, क्लाउड किचन कर लूंगी। पर हुण मैं अरमान दी प्रमोशन करके होर ड्रामा नहीं कर सकती।
1: अच्छा
4: देखो साहब जी, ए जो भी होया ना मजबूरी च होया। हर कोई जिंदगी च तरक्की चाहुंदा है, प्रमोशन चाहुंदा है।
6: हां जी।
4: जे यही चाहत पूरी कर ली, असी नाटक कर लिया तो केड़ा गुनाह कर लिया जी।
1: सो व्हाट?
4: असी तो सोचा सी कि साडे घर आके तुसी बबली दे बनाए खाने ते खुश होके अरमान दी प्रमोशन कर दोगे।
1: नो।
4: ते सानू की पता सी जी कि गल हदों पार हो जाएगी, ते अरमान नू अपनी वाइफ नू मिलन लई भेस बदल के आना पऊगा जी।
6: आई एम सॉरी सर।
5: हां जी सानू माफ कर दियो सर।
6: जी जी
1: भाई, माफी तो मैनू भी मंगनी चाहिए थोड़े कोलों। मैं ते मम्मा खुद गर्ज होके बबली जी नू नौकरानी समझ के अपनी कार ले आए।
5: इट्स ओके।
1: इस गल दा मैनू पछतावा रहेगा।
4: तुसी ना पछतावा करो साहब जी, जे तुसी कुछ करना ते साडे अरमान दी करो प्रमोशन।
1: प्रमोशन समझो फिर हो गई थोड़े।

0: कुमार जी, चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के जाने माने साहित्यकार, कवि हैं, अनुवादक हैं, साहित्यकार हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा सुभाष कुमार जी से कि
1: धन्यवाद।
0: वो अपनी कोई नई कविता आपके सामने और हमारे सामने प्रस्तुत करें।
1: जी
0: सुभाष कुमार जी,
1: धन्यवाद।
0: स्वागत है।
1: सुभाष भास्कर का सभी को नमन। अंतर्द्वंद, आदिकाल से ही चल रहा है अंतर्द्वंद। आकाश में, पाताल में, पर्वतों में, समुद्र में,
0: वाह
1: सारी कायनात में, यानी
0: वाह
1: पूरे ब्रह्मांड में
0: जी
1: करता मंथन उपजता असीम शक्ति का अनमोल खजाना। कभी डरावना बन
0: हैं
1: बरपाता कहर, तो कभी आनंद स्वरूप बन उपजता सुंदर
0: वाह
1: प्रकृति।
0: वाह वाह बहुत अच्छा।
1: यही अंतर्द्वंद है जो उपजता है सकारात्मकता और नकारात्मकता को।
0: हाँ जी,
1: बहुत अच्छे। यही अंतर्द्वंद है जो उपजता है सकारात्मकता और नकारात्मकता।
0: नकारात्मकता
1: चलता रहता है भीतर धारा प्रवाह सभी के अंतर्मन में और मेरे अंतर्मन में भी। जन्म देता बहुत सी सकारात्मकता और नकारात्मकता को।
0: हाँ जी, वाह वाह वाह वाह
1: हमें सज रहना होगा, नकारात्मकता हावी ना हो जाए।
0: वाह वाह वाह
1: हमें
0: हाँ
1: सज रहना होगा, नकारात्मकता हावी ना हो जाए। कभी भी सकारात्मकता पर अंतर्द्वंद तो चलता रहेगा,
0: हाँ
1: युगों युगों तक,
0: वाह
1: अनंत काल तक, निरंतर।
0: वाह
1: बहुत
0: जी,
1: अच्छे,
0: वाह जी,
1: बहुत
0: अनंत
1: धन्यवाद।
0: काल तक निरंतर जी।
1: दूसरी कविता का विषय है पिता।
0: वाह
1: पिता
0: विशाल
1: होते हैं पर्वत से,
0: विशाल।
1: पर्वत से भी ऊंचा है केवल एक किरदार पिता का।
0: आह
1: औलाद ही
0: आह,
1: होती
0: पर्वत
1: है,
0: से भी
1: क्या
0: ऊंचा है
1: बात
0: एक किरदार पिता का।
1: है, औलाद ही होती है बस
0: हाँ
1: पूरा संसार पिता का।
0: हाँ
1: चाचे ताए बहुत से रिश्ते, नदियां झीलों की मानिंद, सब रिश्तों से ऊपर है सागर सा विस्तार पिता का।
0: बहुत अच्छे,
1: अपनी
0: बहुत अच्छे।
1: हसरतें दफन हृदय में, कर सकता जो जीवन भर, हम जो मांगे मिल जाता है, ऐसा है इकरार पिता का। पानी सा रिश्ता है उनसे, घुल मिल जाए इस कदर।
0: वाह वाह वाह,
1: पानी सा
0: अनुष्ठा
1: रिश्ता है उनसे, घुल मिल जाए इस कदर। घनिष्ठ मित्र सा रहता है बच्चों से व्यवहार पिता का। डांट में भी जो शिक्षा देता,
0: हाँ,
1: डांट में भी जो शिक्षा
0: शिक्षा
1: देता, वो
0: देता।
1: सच्चा मार्गदर्शक,
0: हाँ,
1: जिंदगी को जीना सिखलाता, ऐसा है संस्कार पिता का।
0: पिता का।
1: जीवन भर संघर्ष है करता, देखिए
0: हाँ,
1: सर,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: जीवन भर संघर्ष है करता, आंधी आए या तूफान। जीवन भर संघर्ष है
0: संघर्ष
1: करता,
0: करता।
1: आंधी आए या तूफान, मंजिल पर जब पहुंचे बेटा हो सपना
0: वाह
1: सा। लास्ट पैरा है, खारा पानी आंखों में रख, खारा पानी आंखों में रख, बेटी की जो करे विदाई, बस ऊपर से जो छलके, वो होता है प्यार पिता का, वो होता है प्यार
0: बहुत
1: का।
0: खूब, बहुत
1: पिता
0: अच्छे।
1: का
0: खुदा को
1: होता है
0: बहुत अच्छे
1: प्यार
0: ढंग से
1: पिता का।
0: आपने बर्बाद
1: अंतर्द्वंद और प्यार पिता की बात
0: बिल्कुल
1: अभी आप सुन रहे थे सुभाष भास्कर जी से। जी
0: और अब मैं जिस शख्स को दावत देने जा रहा हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो कविता भी लिखते हैं, नज़म भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं। मेरी मुराद सैली बलजीत साहब से है।
1: बहुत
0: सैली बलजीत
1: शुक्रिया
0: जी,
1: जी।
0: स्वागत है आपका।
1: गजल के कुछ शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ।
0: वाह वाह,
1: जी
0: स्वागत
1: गजल
0: है आपका।
1: का मतलब देखिए।
0: अर्शाद,
1: जीना
0: वाह
1: है तो जिंदगी को संवारना सीख,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: जीना है
0: हाँ
1: तो जिंदगी को संवारना
0: संवारना
1: सीख,
0: सीख। हाँ
1: किसी के पाँव का कांटा निकालना सीख,
0: वाह,
1: किसी के पाँव का
0: कांटा
1: कांटा निकालना
0: निकालना
1: सीख।
0: सीख।
1: तो शेर देखना।
0: जी
1: कीमती जागीर है
0: जी
1: फिर मैसर नहीं होगी, कीमती जागीर है फिर मैसर नहीं होगी, घर के बुजुर्गों को पगले संभालना सीख। बहुत खूब,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह वाह
1: खूब।
0: वाह,
1: कीमती जागीर है फिर
0: हाँ
1: मैसर नहीं होगी,
0: हाँ
1: घर के बुजुर्गों को पगले संभालना
0: संभालना
1: सीख।
0: सीख
1: तो शेर है।
0: जी। अच्छा,
1: दरख्त भी
0: स्वागत।
1: होते हैं बच्चों की मानिंद,
0: वाह।

0: दरख्त भी होते हैं बच्चों के मानिंद,
1: हाँ
0: बच्चों की तरह इनको पालना सीख,
1: सीख।
0: वाह बच्चों की तरह इसको पालना सीख। तो शेर देखना,
1: अच्छा
0: सियासत के शहर में सब चलता है,
1: वाह, फिर कहिए।
0: सियासत के शहर
1: मैं
0: में
1: सब
0: सब
1: चलता
0: चलता है, खोटा सिक्का तो भी उछालना।

0: द्रक भी होते हैं बच्चों के मानिंद,
1: हाँ
0: बच्चों की तरह इनको पालना सीख।
1: सीख।
0: वाह वाह, बच्चों की तरह इसको पालना सीख। तो शेर देखना,
1: अच्छा
0: सियासत के शहर में सब चलता है,
1: वाह, फिर कहिए।
0: सियासत के शहर
1: मैं
0: में
1: सब
0: सब
1: चलता।
0: चलता है, खोटा सिक्का तू भी उछालना सीख।
1: हाँ,
0: वाह क्या
1: खोटा
0: बात है,
1: सिक्का।
0: खोटा सिक्का तू भी
1: वाह वाह वाह
0: उछालना
1: वाह
0: सीख।
1: वाह।
0: तो शेर है, परिंदे खुद ब खुद आ जाएंगे जाल में,
1: हाँ,
0: परिंदे खुद
1: खुद
0: ब
1: ब खुद
0: खुद
1: आ
0: आ
1: जाएंगे जाल
0: जाएंगे जाल
1: में।
0: में, सलीके से उनको दाना डालना सीख,
1: आह
0: सलीके
1: आह, क्या बात
0: से
1: क्या
0: उनको
1: बात।
0: दाना डालना सीख। तो शेर देखना, इस शहर में रहने का ये हुनर है,
1: वाह
0: इस शहर में रहने का ये हुनर है, इस शहर में
1: हाँ
0: रहने का ये हुनर है, आस्तीन में सांप तुम ही पालना सीख।
1: हाँ
0: ओह
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह वाह
0: बात,
1: वाह।
0: आस्तीन में सांप तुम भी पालना सीख। तो शेर देखना, जीने का सलीका तुम सीख ही जाओगे,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: जीने का सलीका
1: तुम सीख ही
0: सीख ही
1: जाओगे।
0: जाओगे, ख्वाबों को हकीकत में डालना सीख।
1: हाँ
0: क्या बात,
1: ख्वाबों
0: बहुत
1: को
0: खूब,
1: हकीकत
0: हकीकत
1: में
0: में डालना
1: डालना
0: सीख।
1: सीख।
0: तो
1: मुकर्रर
0: शेर देखना,
1: जी।
0: कितना हौसला रखते हो तुम
1: हाँ
0: क्या जानो,
1: हाँ
0: कितना हौसला रखते हो तुम क्या जानो,
1: वाह
0: दुश्वारियों लाचारियों को टालना सीख,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: दुश्वारियों लाचारियों को
1: तालना
0: टालना
1: सीख
0: सीख। तो शेर देखना,
1: जी। अरशाद
0: कितना हौसला रखते हो तुम क्या जानो, दुश्वारियों लाचारियों को टालना सीख। तो गजल का मकता है, दुआ कभी बेअसर जाती नहीं,
1: हाँ, दुआ
0: देख
1: कभी
0: बेअसर
1: बेअसर
0: जाती
1: जाती
0: नहीं,
1: नहीं।
0: देखना तुम खुदा को तू भी दिल से पुकारना सीख,
1: आह
0: खुदा को तू भी दिल से
1: दिल से
0: पुकारना
1: पुकारना
0: सीख,
1: सीख।
0: जीना है तो जिंदगी को संवारना सीख,
1: काटा
0: किसी के पांव का कांटा निकालना
1: निकालना
0: सीख।
1: सीख। बहुत खूब बहुत खूब
0: मेरी दूसरी गजल
1: जी
0: कुछ शेर प्रस्तुत हैं, तो मतलब देखिए,
1: जी
0: जिंदगी हादसों के सफर में रहती है,
1: जिंदगी हादसों के
0: सफर
1: सफर
0: में
1: में
0: रहती
1: रहती
0: है,
1: है।
0: किस्मत जाने किस घर में रहती है,
1: हाँ
0: किस्मत जाने किस घर में रहती है। तो शेर देखना, बारिशों का मौसम आता है जब भी,
1: हाँ
0: बारिशों का मौसम आता जब भी, तिशनगी क्यों समंदर में रहती है,
1: वाह वाह,
0: वाह
1: तिशनगी क्यों समंदर में रहती
0: तिशनगी
1: है।
0: क्यों समंदर में रहती
1: समंदर।
0: है।
1: हाँ
0: तो शेर देखना,
1: अरशाद,
0: सिमर जी ये आपके लिए शेर देखना
1: स्वागत
0: जरा,
1: है जी, स्वागत है जी।
0: दीवारें मजहब
1: जरे
0: की,
1: नवाजी।
0: दीवारें मजहब की चिड़िया
1: हाँ
0: क्या जाने,
1: वाह वाह
0: दीवारें
1: वाह,
0: मजहब की
1: चिड़िया क्या।
0: चिड़िया क्या जाने, मस्जिद में कभी मंदिर में रहती है,
1: हाँ,
0: मस्जिद में कभी
1: कभी
0: मंदिर
1: मंदिर
0: में
1: में
0: रहती
1: रहती
0: है।
1: है।
0: तो शेर है, अर्जन नहीं तो क्या हुआ फिर
1: हाँ
0: भी, अर्जन नहीं तो
1: हाँ
0: क्या हुआ फिर भी, आंख मछली की नजर में रहती है,
1: वाह वाह वाह, आंख मछली की नजर
0: अर्जन
1: में
0: नहीं तो
1: रहती
0: क्या
1: है।
0: हुआ फिर भी, आंख मछली की नजर में रहती है। तो शेर है,
1: जी
0: रहती है आग की जद में अब भी,
1: हाँ
0: रहती है आग की जद में अब भी, हवा भी उदास शहर में रहती है,
1: ओह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह,
0: वाह,
1: हवा
0: हवा
1: भी
0: भी उदास
1: उदास शहर में।
0: शहर में रहती है। तो शेर है,
1: जी
0: उड़ाने परिंदे की झोली में रहती हैं, उड़ाने परिंदे की झोली में रहती हैं, ताकत जब तक उनके पर में रहती है,
1: वाह वाह वाह,
0: ताकत जब तक उनके पर में रहती है। तो शेर है,
1: जी स्वागत
0: पेट
1: है।
0: कट गए शहर में गली गली, पेट कट गए
1: शहर
0: शहर
1: में।
0: में गली गली, खलबली सी हर शजर में रहती है,
1: वाह
0: अरे
1: वाह वाह,
0: बहुत
1: खलबली
0: खलबली
1: सी
0: सी
1: हर शजर
0: हर
1: में
0: शजर में
1: रहती है।
0: रहती है। तो शेर देखना,
1: हाँ जी
0: गजलें ही ओढ़ता और बिछाता हूँ,
1: हाँ जी, वाह वाह वाह
0: गजलें
1: वाह,
0: ही
1: बहुत सुंदर।
0: ओढ़ता और बिछाता हूँ, मेरी हर गजल अब बहर में रहती है।
1: वाह वाह वाह
0: वाह
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह, बड़ी अच्छी बैर है
0: खूब
1: ये,
0: शेर
1: बैर भी
0: लिखा,
1: बहुत अच्छी है।
0: गजलें ही ओढ़ता और बिछाता हूँ,
1: हाँ
0: मेरी हर गजल अब बहर में रहती
1: रहती
0: है।
1: है।
0: तो शेर देखना, दरो दीवारें राह तुम्हारी तकती हैं,
1: हाँ
0: चिड़िया तू अब कौन नगर में रहती है,
1: वाह वाह,
0: चिड़िया
1: चिड़िया तू अब कौन नगर में
0: बहुत
1: रहती है।

0: कप्टाउन
1: और
0: नगर में रहती है, तो गजल का मकता देखना। हौसला ही होता है साथ मेरे, कश्ती मेरी जब भी भंवर में रहती है, कश्ती मेरी जब भी भंवर में रहती है। अब मैं आदरणीय सिमर सदोज जी को दावत देना चाहूँगा। सिमर सदोज जी पंजाब के हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, लगभग 50 सालों से साहित्य में सक्रिय रहे हैं।
1: शुक्रिया।
0: संपादक के रूप में उनका अनुपम योगदान भी सदा सराहनीय रहेगा। उनकी क्षेत्र छाया में पनपे साहित्यकार आज साहित्य में झंडे गाड़ रहे हैं। और उनका एक और पहलू मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। सेमर सदोज जी की गज़ल में बहुत महारत है
1: शुक्रिया जी,
0: और
1: शुक्रिया
0: वो
1: जी,
0: अक्सर नामी मशायरों में शिरकत करते रहते हैं। तो
1: शुक्रिया
0: आज
1: जी,
0: मेरी गुजारिश है वो अपनी चुनिंदा गज़लें प्रस्तुत करें।
2: स्वागत है
1: शुक्रिया
2: जी।
1: जी,
2: नवाज़
0: वेलकम।
2: शाह जी, जर्रे जर्रे से प्यार करते हैं,
0: जर्रे जर्रे से प्यार करते हैं,
2: जर्रे जर्रे से प्यार करते हैं, हम तुझे आशकार करते हैं,
0: वाह
2: वाह
0: वाह बहुत खूब।
2: जर्रे जर्रे से प्यार करते हैं, हम तुझे आशकार करते हैं।
0: वाह वाह वाह
2: इस जहां में गुनाह है उल्फत, इस जहां में गुनाह
0: है उल्फत,
2: है उल्फत, ये गुनाह
0: हम बार
2: बार
0: बार
2: बार
0: करते
2: करते
0: हैं।
2: हैं,
0: वाह
2: वाह
0: वाह बहुत
2: ये
0: खूब,
2: गुनाह
0: हम बार
2: बार
0: बार
2: बार
0: करते
2: करते हैं।
0: हैं।
2: तो एक और मुक्तक है,
0: इरशाद,
2: आपसे मुझको मोहब्बत है बहुत,
0: क्या बात,
2: आपसे मुझको मोहब्बत है
0: वाह
2: बहुत, आपको मुझसे अदावत है बहुत,
0: वाह
2: वाह
0: वाह,
2: आपसे मुझको मोहब्बत है बहुत, आपको मुझसे अदावत है बहुत। अरे हमने कब मांगा वफाओं का सिला, हमने कब मांगा
0: वफाओं
2: वफाओं
0: का
2: का
0: सिला
2: सिला,
0: सिला,
2: आपको फिर भी शिकायत है बहुत,
0: वाह वाह
2: वाह
0: बहुत
2: आपको
0: खूब बहुत
2: फिर
0: खूब,
2: भी शिकायत
0: शिकायत
2: है
0: अब
2: बहुत।
0: वाह।
2: एक और है मुक्तक है, जब घटा आसमां पे छाई है, जब घटा आसमां पे छाई है, तेरी जुल्फों की याद आई है,
0: वाह
2: वाह
0: याद आई है, वाह
2: जब घटा आसमां पे छाई है, तेरी जुल्फों की याद आई है, तू सितम तोड़ता रहा मुझ पर,
0: तो सितम
2: तू
0: तोड़ता रहा,
2: सितम तोड़ता रहा मुझ पर, खैर मैंने तेरी मनाई
0: वाह
2: है,
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: खैर
0: बहुत
2: मैंने
0: खूब, क्या अंदाज है,
2: तेरी
0: वाह
2: मनाई है।
0: बहुत खूब,
2: एक
0: बहुत अच्छे।
2: और मुक्तक, एक दो पेशे
0: स्वागत है जी,
2: खिदमत है, उसके
0: स्वागत
2: बाद मैं गजल कहना चाहूंगा आपकी इजाजत से।
0: जी,
2: ये
0: बिल्कुल।
2: गंगा है पावन गंगा, गंगा की बात चलती है आजकल बहुत पानी,
0: ये गंगा
2: ये
0: है,
2: गंगा है पावन गंगा, गंगा को अविरल बहने दो, ये गंगा है पावन गंगा, गंगा को अविरल
0: अविरल
2: बहने
0: बहने
2: दो,
0: दो।
2: गंगा से हो तन मन निर्मल, गंगा से हो तन मन निर्मल, गंगा को निर्मल रहने दो,
0: निर्मल, वाह वाह क्या
2: गंगा
0: बात है,
2: को
0: बहुत खूब
2: निर्मल
0: बहुत
2: रहने
0: खूब।
2: दो। एक और मुक्तक,
0: इरशाद,
2: ये आपकी नजर, किसने चीर हरा द्रुपदा का, किसने चीर हरा द्रुपदा का, किसने लज्जा अपहृत कर ली, किसने चांद की सारी ठंडक अपने गोदामों में ली,
0: वाह वाह
2: ओ
0: ओ बहुत खूब
2: किसने
0: बहुत खूब,
2: चांद की सारी
0: क्या
2: ठंडक
0: बात है।
2: अपने गोदामों में, कहो तो धूप पर लिख दूं,
0: कहो
2: आपकी नजर है
0: तो
2: जी शैली साहब,
0: इरशाद,
2: कहो
0: इरशाद
2: तो
0: साहब,
2: धूप पर लिख दूं, कहो तो धूप पर लिख दूं, उतरती छांव पर लिख दूं, लिखूं रिश्मों की कलमों से हरित कचनार पर लिख दूं,
0: वाह वाह
2: वाह कहो तो धूप पर लिख दूं, उतरती छांव पर लिख दूं, लिखूं रश्मि की कलमों से हरित कचनार पर लिख दूं, कहो तो बाल पर लिख दूं, कहो तो बाल पर लिख दूं, झुकाकर डाल पर लिख दूं, हवा के हाथ पर लिख
0: वाह
2: दूं,
0: वाह वाह
2: समय के पांव पर लिख दूं,
0: वाह वाह बहुत खूब,
2: हवा के हाथ पर लिख दूं, समय के पांव पर लिख दूं, कहो तो मानसर जाकर कमल की पांत पर लिख
0: बहुत
2: दूं,
0: अच्छा, वाह बहुत खूब,
2: कहो तो मानसर जाकर कमल की पांत पर लिख दूं, फूल की डाल पर लिख दूं, हरित कचनार पर लिख दूं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।

0: फूल की डाल पर लिख दूं, हरित कचनार पर लिख दूं, लिखूं सूरज के माथे पर, लिखूं सूरज के माथे पर, चांद के गाल पर लिख
1: दूं। बात को क्या क्या उड़ाना क्या?
0: लिखूं सूरज के माथे पर, चांद के गाल पर लिख दूं, लिखूं सुबह की चूनर पर, लिखूं सुबह की चूनर पर, सांझ के द्वार पर लिख दूं।
1: वाह वाह,
0: लिखूं सुबह की चूनर पर, सांझ के द्वार पर लिख दूं, कहो उत्तुंग शिखरों पर हिमालय भाल पर लिख दूं।
1: हिमालय भाल,
0: कहो उत्तुंग शिखरों पर हिमालय भाल पर लिख दूं, पवन के वेग पर लिख दूं, घटा घनकोर पर लिख दूं। तो ये पंक्तियां सुनिएगी,
2: क्या बात।
0: तुम्हारा नाम प्यारा है, महज इस ख्याल से लिख दूं।
2: ओ क्या बात,
0: तुम्हारा नाम प्यारा है,
2: महज
0: इस ख्याल से लिख दूं। तो एक गजल छोटी सी, छोटे पैर की मतलब हजर है। नागमणि को नाग खा गए, नागमणि को
1: नाग
0: खा गए, कारे बदरा राग खा गए। नागमणि को नाग खा गए, कारे बदरा राग खा गए, मलिक का खा गए हलवा पूरी, मलिक का खा गए हलवा पूरी, विदुर के घर का साग खा गए, विदुर के घर का साग। अपना हिस्सा खाना ही था, आज की दुनिया अपना हिस्सा खाना ही था, औरों का भी भाग खा गए, हिंस के हिस्से अपना हिस्सा खाना ही था, औरों का भी भाग खा गए, हंस के हिस्से दाना दुनका, हंस के हिस्से दाना दुनका, हीरा मोती काग खा गए, हम तो हम बदनाम हो गए, हम तो हम
2: बदनाम
0: हो गए, वो तो सब बेदाग खा गए, वो तो सब बेदाग खा गए। तो ये मैं अपनी छोटी बैर की इस गजल के बाद मैं दूसरे दौर की ओर जाना चाहूँगा, और उसके दौरान भी मैं सुभाष भास्कर जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि वह अपनी कोई एक एक कविता, पहले दौर में दो दो कविताएँ चली थी, अब मैं चाहूँगा कि वो एक कविता आप सबके सामने और हमारे सामने प्रस्तुत करें, सुभाष बस भास्कर
2: जी। सो आजकल
1: स्वागत स्वागत,
2: नशे का जो चल रहा है उसी पर एक कविता है पेश है
0: जी।
2: युद्ध नशे के विरुद्ध, एक युद्ध और लड़ना होगा, नशे के विरुद्ध खड़ना होगा।
0: वाह वाह वाह,
2: एक युद्ध और लड़ना होगा, नशे के विरुद्ध खड़ना होगा, लेकर मशाल हाथों में अब सीमा की ओर बढ़ना होगा,
0: बढ़ना होगा,
2: जोश से बिगल बुझाना होगा, निर्दोष जवानी को बचाना होगा, सीमा पर खड़े हैं जो प्रहरी, कंधा उनसे मिलाना
0: होगा,
2: कसनी होगी लगाम हमको, ड्रोनों को मार गिराना होगा
0: जी,
2: चिट्टे के काले कारनामों को जड़ से हमें मिटाना।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी।
2: मौत के इन सौदागरों को
0: जी,
2: मौत के इन सौदागरों को अच्छा सबक सिखाना होगा,
0: हाँ।
2: युवाओं को भी समझाना होगा, हाँ। जागरूक इन्हें भी बनाना होगा,
0: हाँ, हाँ, हाँ।
2: किस हद तक गिर गए ये तस्कर, किस हद तक गिर गए ये तस्कर, देने लगे हैं दवाओं में जहर,
0: हाँ।
2: गांव गांव और शहर शहर, रखनी होगी पैनी नजर, बदलाव हमें लाना होगा, नशा मुक्त समाज बनाना होगा, नशा मुक्त समाज बनाना,
0: नशा मुक्त समाज बनाना होगा।
2: धन्यवाद।
0: तो बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। इस कविता के बाद मैं अब दावत देना चाहूँगा एक बार फिर सैदी बजी जी से कि वो अपनी कोई एक गजल या नज़म आप सबके हमारे श्रोताओं के सामने प्रस्तुत।
1: शुक्रिया जी। दूसरे दौर में गजल के कुछ शेर
2: स्वागत है
1: प्रस्तुत कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाइए। गजल का मतलब देखिए,
0: बुलंद आवाज में बोलिए।
1: बचा के कुछ वीरानी रख लेना तुम, बचा के कुछ वीरानी रख लेना तुम, आंख में कुछ पानी रख लेना तुम, आंख में कुछ पानी रख लेना तुम,

0: तो शेर देखना, वक्त की शाख से टूट जाती हैं,
1: वाह वाह,
0: वक्त की शाख से टूट जाती हैं, कुछ यादें पुरानी रख लेना
1: रख
0: तुम,
1: लेना तुम,
0: कुछ यादें पुरानी रख लेना तुम। तो शेर देखना,
1: जी जी
0: दाना दुन का भी है पिंजरा भी, दाना दुन का भी है पिंजरा भी, एक चिड़िया रानी तू भी रख ला तुम,
1: वाह वाह,
0: एक चिड़िया रानी रख लेना तुम।
1: वाह वाह।
0: तो शेर है, यादें बचपन की
1: जी
0: सताएंगी तुम्हें, यादें बचपन की
2: सताएंगी
0: तुम्हें, चूड़ियों की निशानी रख लेना तुम,
1: वाह वाह,
0: चूड़ियों की निशानी
2: रख
0: लेना तुम।
1: हाँ जी।
0: तो शेर देखना,
1: जी
0: नींद आ ही जाएगी बच्चे को,
1: जी
0: नींद आ ही जाएगी बच्चे को,
1: जी
0: साथ में एक कहानी रख लेना
1: रख
0: तुम,
1: लेना तुम, वाह
0: साथ
1: वाह,
0: में एक कहानी रख लेना तुम, चार दिनों की महिमा होती है,
1: जी
0: शेर देखना,
1: जी
0: चार दिनों की महिमा होती है,
1: हाँ,
0: संभाल के जवानी रख लेना तुम,
1: वाह वाह वाह,
0: चार दिनों की महिमा होती है, संभाल के जवानी रख लेना तुम। तो शेर है, दानिशमंदों की बस्ती में रहते हो,
1: वाह वाह वाह वाह, दानिशमंदों की बस्ती में रहते हो,
0: दानिशमंदों की बस्ती में रहते हो, बातें कुछ सयानी रख लेना तुम, बातें कुछ सयानी रख लेना तुम। तो शेर है, बारिशें आएंगी सताएंगी भी तुम्हें, बारिशें आएंगी
1: सताएंगी
0: भी तुम्हें, साथ शामे सुहानी रख लेना तुम, साथ शामे सुहानी रख लेना तुम। चांद के लिए मचलेगा बच्चा जब भी, चांद के लिए मचलेगा बच्चा जब भी, थाली में पानी रख लेना तुम, थाली में पानी रख लेना तुम।
1: तो साहेब, दूसरे दौर की इस बारी में मैं अपनी बारी के दृष्टिगत के जरिए अपनी एक गज़ल छोटे बहर की पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले दो मुक्तक आपकी नज़र हैं, कुछ इस तरह से वक्त के तेवर बदल गए,
0: वाह वाह वाह,
1: कुछ इस तरह से वक्त के तेवर बदल गए, कल तक थे मेरे मेहरबान यकसर बदल गए, कल तक थे मेरे मेहरबान यकसर बदल गए, वो गली, भास्कर साहब
2: जी,
1: वो गली रह गुजर बनी जिनके सबब दोस्तों, वो गली रह गुजर बनी जिनके सबब दोस्तों, अफसोस उस गली से वो घर बदल गए, अफसोस उस गली से
0: घर
1: बदल गए।
2: क्या बात।
1: तो एक और कथा है, वफा की डगर पर जरा दूर चल के, वफा की शैली साहब, वफा की डगर पर जरा दूर चल के वो फिर रूठ बैठे हैं पहलू बदल के, वफा की डगर पर जरा दूर चल के वो फिर रूठ बैठे हैं पहलू बदल के, वो कर देंगे अफशां ये राज़े मोहब्बत,
2: क्या बात,
1: वो कर देंगे अफशां ये राज़े मोहब्बत, जो आंखों से निकलेंगे आंसू पिघल कर, वो कर देंगे अफशां ये राज़े मोहब्बत, जो आंखों से निकलेंगे के आंसू पिघल कर। तो गजल है, बताए, पहले तो वो कभी कभी ही लूटा करते थे, पहले तो
0: वो कभी कभी
1: कभी कभी ही लूटा करते थे, लूट से पहले बैंक में हफ्ता भरते थे,
0: वाह वाह वाह,
1: लूट से पहले
2: बैंक में
1: पुलिस बैंक में हफ्ता
0: भरते थे,
1: आज स्नैचर लूट पीट कर घायल करते हैं, कल तक वो अलबत्ता थोड़ा दीन से डरते थे, तो एक समय अदना सिपाही की भी इज्जत होती थी, सब चोर लुटेरे उससे बेशक डरा भी करते थे। एक और छोटी गजल के दो चार
0: इरशाद, इरशाद था,
1: उड़ गए थे जो खग आए हैं, उड़ गए थे जो खग आए हैं, भेष बदल के

0: गए
1: था
0: हैं,
1: गए
0: उड़ गए थे
1: जो
0: जो खग
1: खाता है।
0: आए हैं, भेष बदल कर ठग आए हैं, बुझे चिरागों जैसे हैं ये, जितना जगना जग आए हैं,
1: जग आए हैं, क्या बात है।
0: बुझे
1: जितना
0: चिरागों
1: जगना
0: से जैसे हैं ये, जितना
1: जगना
0: जगना
1: जग आए
0: जग
1: हैं।
0: आए हैं, जेलम रावी और चिनाब, जेलम
1: रावी
0: रावी
1: और
0: और
1: चिनाब,
0: चिनाब, लेंदे हिस्से रख आए हैं,
1: वाह वाह क्या उड़ाना है,
0: जेलम
1: क्या बात है,
0: रावी और
1: और चिनाब
0: चिनाब, लेंदे हिस्से
1: रख
0: रख
1: रख
0: आए
1: आए
0: हैं,
1: हैं।
0: जितनी छोटी बुद्धि इनकी, जितनी छोटी बुद्धि इनकी उतना छोटा कद लाए हैं,
1: वाह वाह बहुत खूब, बिल्कुल ठीक।
0: जितनी
1: जितनी
0: छोटी
1: छोटी बुद्धि
0: बुद्धि इनकी
1: इनकी
0: उतना
1: उतना
0: छोटा
1: छोटा
0: कद
1: कद लाए
0: लाए
1: लाए हैं,
0: हैं,
1: बहुत खूब।
0: हंस को हिस्से के हीरे, हंसों के हिस्से के हीरे काले को वे चुगाए
1: वाह
0: हैं,
1: वाह बहुत खूब।
0: हंसों के
1: के
0: हिस्से
1: हिस्से
0: के
1: के हीरे
0: हीरे
1: काले
0: काले
1: को वे
0: कौवे
1: चुगाए
0: चुगाए
1: हैं,
0: हैं,
1: बहुत अच्छे।
0: कैक्टस वाले गमलों में ज्यों, कैक्टस
1: वाले
0: वाले
1: गमलों में
0: गमलों
1: जो
0: में ज्यों फूल काशनी खिलाए हैं,
1: खिलाए हैं, फूल काशनी
0: कैक्टस
1: खिलाए,
0: वाले
1: फूल
0: गमलों में ज्यों फूल
1: काशनी
0: काशनी
1: खिलाए हैं, बहुत
0: खिलाए
1: खूब
0: हैं,
1: बहुत खूब।
0: नायक से धारण कर वस्त्र, नायक से
1: धारण कर
0: धारण
1: वस्त्र,
0: कर वस्त्र, खलनायक से खलाए
1: वाह
0: हैं,
1: वाह बहुत अच्छे।
0: नायक से धारण कर वस्त्र, खलनायक से खलाए हैं, आदम की बस्ती के अंदर, आदम की
1: बस्ती के अंदर।
0: बस्ती के अंदर खर दूषण भी चल आए हैं,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: खाया मलिक का हीरा हलवा पूरी, साग विदुर का दल आए हैं, छोटे कद के ये अजगर हैं, पूरा शहर निगल आए
1: वाह
0: हैं,
1: वाह वाह वाह,
0: छोटे
1: निगल
0: कद
1: आए
0: के
1: हैं,
0: ये अजगर हैं,
1: पूरा शहर
0: पूरा
1: निगल आए
0: शहर
1: हैं,
0: निगल
1: बहुत
0: आए
1: खूब।
0: हैं।
1: छोटी सी कविता, एक एक पेड़ माँ के नाम,
0: वाह वाह
1: एक पेड़ अगर माँ के नाम लगाएंगे तभी तो पर्यावरण हम बचा
0: बचा
1: पाएंगे,
0: पाए,
1: आम और जामुन गर पेड़ लगाएंगे रसीले फल तभी तो खा हम पाएंगे,
0: वाह वाह,
1: नींबू और मौसमी खूब उगाएंगे गर्मी से तभी तो राहत पाएंगे,
0: जी
1: आंवला हर बेहड़ा यदि लगाएंगे बीमारियों से निजात इन्हीं से पाएंगे,
0: वाह
1: पहाड़ों पर भी पेड़ पौधे जब लाएंगे हरे भरे पर्वत फिर से हो जाएंगे, कर प्रयास जंगल को अगर बचाएंगे फिर से पंछी उन पर चहचहाएंगे, मेघा फिर धरती पर जल बरसाएंगे, गीत खुशी में मिलकर हम सब गाएंगे, गीत खुशी
0: गीत
1: में मिलकर
0: खुशी।
1: हम
0: तो
1: सब
0: चलिए,
1: गाएंगे।
0: ये गीत खुशी के थे
1: जी
0: जो अभी गाए गए, अभी सुनाए गए हमारे आकाशवाणी की इस काव्य गोष्ठी में। हमारे पास तशरीफ फरमा हुए थे जनाब सैदी बलजीत साहब और श्री सुभाष भास्कर जी और
1: जी
0: मैं सिमर सदोष। मैं आपसे अब विदा होने की इजाज़त चाहूँगा।
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया,
1: धन्यवाद,
0: नवाजश, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: शुक्रिया जी, बहुत बहुत। हुणे तुसीं कवि गोष्ठी सुन रहे सी पागलन वाले कलाकार सन सैली बलजीत, सुभाष चंद्र ते सिमर सदोश। आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। लहू समात फरमाओ चंद गजलां। सब तो पहला पिनाज मसानी दी आवाज़ च ए गजल समात फरमाओ।

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे हो गजलों का प्रोग्राम ते प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है गजल आशा भोंसले ते भुपिंदर सिंह की आवाज़

0: ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਈ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਤ 11:05 ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वाम दल को एक सीट मिली है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है। कांग्रेस को 1 सीट मिली है। DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव

0: This evening, Mr. Modi said today heralds a new dawn for the nation and people have placed their trust in India's great democracy, politics for, of performance and trust in the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
1: Jai Parajay Loktantra aur Chunavi Rajniti ka ek swabhavik hissa hota hai. लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है. लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है. और आज सिर्फ

0: विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: And with that, we end this news bulletin.
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र ए। इस वेले रात दे 11:10 हो चुके ने। हुण साडी अज दी सभा दे प्रोग्राम इत्थे ही खत्म हुंदे ने, पर डीटीएस स्टूडियो तो साडा प्रसारण जारी रहेगा। इस मीटर तो सवेरे 3:55 ते तुहाडी सेवा च
3: रात दे 11:10:15 होए ने। समां हो रिहा जी प्रोग्राम सौगात दा। जी हां, लाइव खतां ते आधारित, फोन कॉल्स आधारित और वट्सएप मैसेज से आधारित प्रोग्राम सौगात। इस प्रोग्राम में असी उही गीत प्ले करते हैं जिन्हां दी फरमाइश सानू साडे स्रोता फोन करके करते हैं। और अगर तुसी फोन करके प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो, सानू कॉल करना चाहते हो, अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हो, सानू कॉल करो 0181-3342-171। तुसी अपनी फरमाइश सानू वट्सएप राही भिजवा सकते हो। साडा नंबर है जी 94655-36077। अगर तुसी मैसेज इंडिया के बाहरों किधरों कर रहे हो, साडा कंट्री कोड +91 यानी 009 लगाना ना भुलना चाहिए। सानू उड़ीक रहेगी तुहाडे प्यारे प्यारे वट्सएप मैसेजेस की और फोन कॉल्स की। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं जी बब्बू मान के गाए हुए इस गीत के नाल। इस गीत तो बाद मैं फिर हाजिर होना जी। जारी रहेगा प्रोग्राम सौगात।

पर थोड़ी फरमाइश तुहाडे तक जरूर जरूर पहुंचेगी जी। हंसराज हंस ते साथियों ने गाया होया ए गीत। प्रोग्राम चल रहा जी सौगात, मैं थोड़ा आज दोस्त अमित इस गीत तो बाद फिर हाजिर होना जी।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं जी, किस जगह तो?
1: शर्मा सर, डेरा कॉलोनी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत तरमा सागर जी थोड़े अपने प्रोग्राम सुगात विच। की हाल चाल ने
1: बहुत बढ़िया सर, ये
0: जी?
1: तो कर
0: जी
1: रहे
0: शायद मौसम का हाल दसो किदा दे ने?
1: सर। बढ़िया, मेर तूफान चल रहा है, बारिश हुई थोड़ी,
0: बारिश हो रही है? ओहो, चलो चलो, मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया हूँ फिर।
1: बार हो गया।
0: तो इन्हें प्यारे मौसम तुम केड़ा गीत सुनाइए फिर?
1: अच्छा
0: हाँ, असी अलड़ पुण चखिया ला बैठे। ए जी सुरेश वाडकर ते रणजीत कौर का एक युगल गीत है जी, वाकई इस मौसम च बहुत जचदा, बहुत फबदा गीत है। तरमसकर जी कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुहाड़ी पसंद का गीत तुहाड़े तक पहुँच रहा, असं उम्मीद करते हैं सन तुसीं दुबारा भी कॉल करोगे। धन्यवाद जी।

0: जी जी जी हरचरण ग्रेवाल और नरेंद्र बीबा का गीत सुनना चाहते हो, बस चली मित्रा दी। कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुहाडी पसंद का गीत तुहाडे तक पहुँच रहा जी। अगर तुसी भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हो सानू कॉल करो 0181 243 171।
1: चल चल बई।

0: हेलो हेलो,
1: ज्ञान
0: हाँ जी जी कौन बोले ने? अपना नाम दसो।
1: सिंह ठंडा बंदलू थवरा फिर
0: ज्ञान जी, बहुत बहुत स्वागत, थोड़ा प्रोग्राम स्वागत। की हाल चाल ने
1: बहुत वजिए प्रश्न
0: जी? अपने बारे दसो, की काम कर दे हो?
1: मैं जी 74 तो कर
0: अच्छा जी, वाह जी वाह, बहुत खुशी हुई तो ना गलबात करके। तो
1: हाँ
0: दिने
1: जी
0: भी मौका मिलता रेडियो सुनना, से राती सुन पाते हो?
1: ना
0: दिने साढ़े प्रोग्राम सुन सकते हो कि नहीं, बिजी होंगे हो?
1: मौत
0: ठीक है जी, आज केड़ा गीत सुनना चाहोगे? रणजीत कौर, मोहम्मद सदीक दा।
1: चलूंगी चलूंगी
0: अच्छा जी, वैसे भी मौसम गर्मी दे ना, तो पक्खी पुखी की लोड़
1: वही
0: पैंदी रहनी है।
1: है।
0: चलो, थोड़ी पसंद है कि तद तक पहुंच रहे हैं जी, कॉल करने बहुत बहुत शुक्रिया।

ये बहुत सारे साथी, इन्होंने भी किसी खास की थी फरमाइश नहीं लिखी जी, बस अपनी हाजिरी लगवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज भेजन लई। एवला वट्सएप मैसेज सानू मिल रहा जी लुधियाना तो, और डुगरी के रहने वाले ने जी, कहते अं तो सारे प्रोग्राम सुनते हैं पर सब तो थोड़ा फेवरेट प्रोग्राम जोड़ा वे और सौगात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी इन्ना प्यार भेजन के लिए। यह कहें जी अपने सारे स्रोतियां की कोशिश करा करो कॉल, बिल्कुल जी जी कॉल बारे गल लिखी है जी, असं कोशिश करते हैं कि सब की कॉल आप जरूर अटेंड करिए, लेकिन इन्नी कॉल्स आ रही होंगी कई बार तो समा लगता, लेकिन कॉल अटेंड जरूर होंगी है जी। तो मैसेज भेजने लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। इन सब की रली मिली फरमाइश, तो आओ सुनते हैं जी प्रोग्राम की अगली पेशकश जैली की आवाज़ों में।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, सत श्री अकाल।
0: हाँ जी, कौन सा कौन बोल रहे हैं जी? किस जगह तो बोल रहे
1: मैं
0: हैं?
1: तो मनीष सर फाइल
0: हाँ जी मनीष, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है
1: हाँ
0: जी
1: जी,
0: प्रोग्राम
1: ओके सर
0: शो।
1: जी, ठीक ठाक
0: किड़ा की सुनवाई तो अजप
1: सर जी। ला दो निम्बत खरा ला दो जी। चल हाँ
0: छला। ठीक है जी मनीष
1: जी,
0: जी, कॉल करने की शुक्रिया। थोड़े पसंद आ गीत तक
1: ओके।
0: पहुंच रहा जी। अगर तुसी भी अपनी पसंद की सुनना चाहते हो सानू कॉल करो 0181 3142 141, और व्हाट्सएप का नंबर है 94655 3607।

0: प्रोग्राम चल रहा जी सुगात, तुसी अपनी पसंद दे पंजाबी गीत सुन रहे हो कॉल करके और व्हाट्सएप मैसेज दे राही। कुछ खत सानू मिले ने जी जिन्हें साडे श्रोता बड़े प्यार नाल लिख के भेजदे ने, उन्हां नूं भी प्रोग्राम में जरूर जरूर शामिल करांगे, लेकिन पहला असी एक कॉलर नाल गलबात कर लीए। हैलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हो जी, किस जगह तो?
1: मैं छिंदर सिंह वारवाल, पिंड मोजम, जिला फारस
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच, की हाल चाल?
1: ਵਧੀਆ ਜੀ।
0: ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?
1: ਮਸਦੀਪ ਰਣਜੀਤ।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ।

0: प्रोग्राम चल रहा जी सौगात पे साढ़े स्टूडियो के घड़ी मुताबिक, इसलिए 12:45 हो रहे हैं। प्रोग्राम का समा सिर्फ 15 मिनट हो रह गया जी। इस तो बाद प्रोग्राम जारी रहेंगे पर सौगात प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम भी प्रोग्राम में लाइव होना चाहते हो, अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हो, सानू कॉल करो 0181 43 141 और यही नंबर मिला के देखते हैं साढ़े वेड़े कौन आए ने, उन्होंने गलबात करते हैं जी। हैलो
1: हेलो। हाँ जी, सत श्रीकाल जी।
0: सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे ने, किस जगह तो?
1: रणजीत बोलना जी, शंभू बॉर्डर तो।
0: रणजीत जी बहुत बहुत थोड़ा स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच, की हाल चाल ने?
1: ठीक ठाक साहब जी, वधिया, तुसी अपने सुनाओ।
0: दिने भी प्रोग्राम सुनने का मौका मिलता है कि रात सुन पाते हो?
1: रात ही सुन दिने का डिफरेंट टाइम।
0: चलो चलो चलो ठीक है जी, ठीक है जी। अज केड़ा गीत सुनना चाहते हो? चलो कॉल करने लिए शुक्रिया जी, थोड़ी पसंद का गीत तक पहुंच रहा है। सतिंदर सताज की आवाज़ में गाया हुआ है पंजाबी गीत।

प्रोग्राम चल रहा जी सुगात, और प्रोग्राम पेश करते करते बहुत अच्छा लग्या तो गलबात करके, बहुत वधिया लगा। लेकिन घड़ी सुइयां कह रही जी कि समा समाप्ति दा, तो होर ज़्यादा आप प्रोग्राम अगे नहीं खिंच सकते। बहुत वधिया लग्या तो गलबात करके। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश दलेर मेहंदी। इस गीत के नाल ही अपने आर्य दोस्त नूं प्रोग्राम इत्थे खत्म करन की इजाजत दिओ, पर तुसी किधरे जाना क्योंकि साडे बाकी दे प्रोग्राम जारी रहणगे। हसदे रहो, वसदे रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, चाहे जंदर रहो, चाहे फरीदाबाद रहो। बहुत जल्दी दोबारा मिलन दे वादे नाल इजाजत दिओ जी। धन्यवाद।

फरीदा खालक खलक मैं खलक वसै रब माँ है, मंदा किसनो आखी है जा तिस बिन कोई ना है। इस कथन तो पाव है सारे जीव उस इको पिता परमेश्वर दी संतान हन, कोई भी चंगा जा माड़ा नहीं है। तांते फिर संदेश यही है कि उस अकाल पुरख दी रजा विच रह के सबनू सम दृष्टि नाल एक सम्मान समझना चाहिदा है। फरमान है, एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बलबल जासी, हर दर्शन देह दिखाई। सरवण करदे हां भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई बलदेव सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। गुरबाणी मनुख मातर नू समदृष्ट होण दा संदेश दिंदी है। समदृष्टि तो भाव है सबनू एक समान समझना। फिर ना कोई वैरी लगता है, ना कोई बेगाना लगता है, सारे अपने मित्र ही लगते हैं। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। जदों सतपुरशां दी संगत मिल जाती है तो फिर पराई तात विसर जाती है, सबना नाल बन आउंदी है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम कौ बन आई। सरवण करदे आ भाई बलबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द।

बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। आप जी सरवण कर रहे सो पाई बलबीर सिंह ते उना दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ये शब्द।

पारथ पारथ गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूरत सदा तेरे लाए चित सनमुख रहो काल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो पान मथुरा मूरत सदा थेर लाए चित सनमुख रहो काल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ।

0: जगत रुपै जानियत बासर रैन बास जाको हित नाम स्यो परमतीत परमेश्वर के रंग रंगियो बासना ते बार पै देखियत ताम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही ओरे काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जुन गुर भगत के हेत पाए रेओ मिल राम स्यो अंत न पावत देव सबे मुन इंद्र महाशिव जो करी फुन भेद ब्रंच विचार रेओ हर जापना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत शिष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माए तरी जग और ना जाहे महातम में अवतार उजागर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुराज ने अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चूके रे मन भेद बपेद न जान बियो पर तछ हृदय गुरु अर्जुन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो।
1: जब लो नहीं भाग लीलारी उदा तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो कल को समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिटह नहीं रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जगत उदारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नहीं अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी
2: काल समुंदर पै रूप प्रगट हरे नाम उदाहरण बस है संत जस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जान्यो भयो तेहे समसर सोई तरन गगन नव खंड मह जोत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हरा अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बच यह

0: वेद ब्रह्म मुख गावे, अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो, गुर अर्जुन सिर सतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पह गयो, हर वंश जगत जस संचर्यो, सो कवन कहे श्री गुर मोयो।
1: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो। रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै, असुर गे ते भाग पाप तिन पीतर कंपै, काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम दा जिन पायो। शतर सिंहासन प्रथमे गुर अर्जन कौ दे आयो, अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख फारे कर आज, फुंद्रोपती लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत बस्तर दीन बोसाज, सोदामा अपदाते राखिया गिनका पड़त पुरे तह काज, श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए, राखो दास पाठ की लाज।
2: जगत उदारन नव निदान, भगतें पवतारन अमृत बूंद हर नाम, बिस्की बिखे निवारन सहज तरोवर फल्यो, ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है, तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पे, सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो, गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो, गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो।

कोट सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसे दही पात कहे जियो देख रो अतनो मोहमा मग पई किंकणी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकता ईसबम ज्ञान त्यान तरत ही चाहे जियो सत सा

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दने आगर गहर गंभीर अत बड सो पर सदा सब द्रत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो।

सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठिया सोहिया सावना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठिया सोहिया सावना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

सदा अखुट कदे नानक खुटै हर दिया सहज सुभाया हर जन ऊचे सद ही ऊचे गुर कै सबद सुहाया।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही महला तीजा, घर तीजा। भगत जना की हर जियो राखै, जोगे जोगे रखदा आया राम। सो भगत जो गुरमुख होवै, हउ मैं शबद जलाया राम।

दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगा जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची।